के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Aap sun rahe the GAFM Network. Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: वरतो पियो वञे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंसानियत खिलाफ़ ॾोहनि ते नितिन जाहूजा वारंट जारी करे चुकी।

मिल दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ईरान जो परदेही वज़ीर इस्कंदर मोमनी आला सतही वफ़द सां गॾु अहम दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं तलाल चौधरी पारां ईरानी हम मुनसिब जे आजियां घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ईरान हम मुनसिब सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त पाकिस्तान अचण ते अव्हां खे ख़ुश आमदीद चवां थो। उमीद आहे त ईरानी घरू वज़ीर इस्कंदर मोमनी सुठी ख़बर सां गॾु आयो आहे। अव्हां जे दौरे पाकिस्तान सां ॿिन्ही तरफ़नि सां लाॻापा मज़बूत थींदा। इलाक़ाई सूरतहाल ते बि अॻभराई जी उमीद आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कराचीअ में 90 वारी ॾहाके में हड़तालनि जा नतीजा अञा ताईं भोगियूं था। नथा चाहियूं त कश्मीर बि कराची जहिड़ियुनि हालतुनि मां गुज़रे। कश्मीर में इलेक्शन मुहिम दौरान एक्शन कमेटी वारनि जो ख़त मिलियो। चाहियां थो त आज़ाद कश्मीर जे ताज़े मसइले ते ट्रुथ कमीशन जोड़ी वञे। रियासत खे ट्रुथ कमीशन जोड़ण ऐं रिपोर्ट अचण ताईं कार्रवाइयूं न करण लाइ राज़ी कंदासीं। ट्रुथ कमीशन ज़रिए कश्मीरनि जा मसला हल करण में मदद मिलंदी। पाकिस्तान ऐं कैनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल कैनेडियन परॾेही वज़ीर अनीता आनंद जूं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां धारदार मुलाक़ातूं। कैनेडा मां कैनोला जे पाकिस्तान दरामद जे प्रोटोकॉल ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं कैनेडा विच में दोस्ताणा लाॻापा आहिनि। वापार, सीड़पकारी ऐं ज़राइत जे शोबनि में वधीक सहकार जी ज़रूरत आहे। कैनेडा जे वज़ीर आज़म सां जल्द मुलाक़ात जो मुंतज़िर आहियां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवणु आहे त कैनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाॻापनि जो क़ीमती असासो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सहकार वधाइण जा वसी मौक़ा मौजूदु आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त पाकिस्तान कैनेडा सां लाॻापनि खे सुठे शोबे में हथी ॾियणु चाहे थो। कैनेडियन परॾेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि खे गॾियल तौरु वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे। ज़राइत, सनत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जा वसी इम्कान मौजूदु आहिनि। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां कैनेडियन परॾेही वज़ीर अनीता आनंद जी मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि, इलाक़ाई सिक्योरिटी ऐं पाक कैनेडा लाॻापनि ते ॻाल्हियूं। ISPR मौजूदु फील्ड मार्शल आलमी अमुन ऐं इलाक़ाई इस्तेकाम लाइ पाकिस्तान जो मौक़िफ़ उजागर कयो। कैनेडियन परॾेही वज़ीर जो दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान जे क़ुर्बानीनि ऐं कोशिशुनि जो एतिराफ़। अनीता आनंद अमुन इस्तेकाम खे हथी ॾियण में पाकिस्तान जे तामीरी किरदार खे साराहियो। हुकूमत अॼु हिकु ॾींहं लाइ पेट्रोल 35 पैसा सस्तो ऐं डीज़ल 5.71 रुपया महांगो करे छॾियो। अघ में इज़ाफ़े बाद डीज़ल जी नई क़ीमत 360.06 रुपया फ़ी लीटर मुक़ररु। पेट्रोल जी नई क़ीमत 315.80 रुपया थी वई। ओगरा नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। अॼु तेल अघनि जूं क़ीमतूं रोज़ाने जी बुनियाद ते मुक़ररु थींदियूं। KTN News 7 पारां हिकु मणु सिंध अमर जे नाओ जे उनवान सां भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान। 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण वारे मुहिम भरपूर नमूने सां हलाई वेंदी। मुहिम दौरान पंहिंजे घर, घिटी, पाड़े, शहर, पार्कनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे हिसे जो ॿूटो पोखे सिंध अमर खे तोहफ़ो ॾेई सघिजे थो। मुख़्तलिफ़ सियासी, समाजी तनज़ीमनि, शागिर्दनि, पोहरेतनि, उस्तादनि समेत समूरनि माहौल दोस्त धुरियुनि खे वण पोखण वारे सदका जारिया में भरपूर शिरकत जी दावत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: पहचो शहर, पहचो घर, सकरंट
3: आए सकरण जो आवाज
2: जी एफ एम 90.8।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

उस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: आइन पानी फराहम करे इंसाफ कयो वञे
4: ऐं केटीएन न्यूज़ सतपारा हिकु वण सिंध अमर जे नाव जे उनवान सां भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण वारी मुहिम भरपूर नमूने सां हलाई वेंदी मुहिम दौरान पंहिंजे घर घिटी पाड़े शहर पार्कनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे हिसे जो बूटो पोखे सिंध अमर खे तोहफ़ो ॾेई सघिजे थो उन बूटे जी सार संभाल जो वचन बि कयो वेंदो मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमनि शागिर्दनि पोहरेतनि उस्तादनि समेत समूरनि माहौल दोस्त धुरिनि खे वण पोखण वारे सदका जारिया में भरपूर शिरकत जी दावत

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे हलण वेहण हर कम दुखियो लगे तो
2: तपोइचा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थई
1: न यार छा वाकई फायदो करे थी
2: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जजब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
1: इस्तेमाल किए कजे
2: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकर उमरे या हजते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा
1: वाह पोए अजी वठींदस
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
3: दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। Assalamualaikum, you are tuning into GEO Radio FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। अभी यू कैसे हैं आप? आई होप शुक्र जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल एक साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार है। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपको मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक. और प्रोग्राम में वक्त की अगर हम बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है. तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक में है, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट ऑल ऑफ द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. बफर से खुदा खैरियत है मौजूद और दवा के लिए खुदा खैरियत है मतलूब. वो तमाम तो लोग जो लोग आज सालगिरह हैं उनको कहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको जाएंगे मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें हमेशा हमेशा.

इसके अलावा जी मेरी आवाज जिन गलियों और खबानों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे बरसतारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आयानु सबस्पुल्ला बोंजोर शाह नीहाओ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है।

हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी गाने के साथ प्रोग्राम में आगे चलेंगे हम. आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 3 तरह का कार से, से पहले तरह का कार है वो है सिंपली मैसेज करने का. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कीजिए 888 पे. और कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है डायल www.facebook.com/gfm88 के ऊपर, जो कि आपको इस पोस्ट पे आने, नहीं सॉरी, इस पेज पे आने के बाद पोस्ट मिल जाएगी आपको. जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, इसके ऊपर कॉल की जा सकती है, जो कि आप लोग करेंगे और डेफिनेटली जरूर कर भी सकते हैं. सो छोटे से कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: एक और कॉलर इन लाइन पे मेरे साथ. हेलो. ओके हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: अभी कुर्बान अली काफ के लिए वो गाना है, बहुत आज गुलाम काफ के लिए अभी झटका मरी जा.
0: कैसे भाई? ठीक ठाक परफेक्ट है. गाना सुनाएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल बुधाई जाए गाना
0: सुना दे.
1: अच्छा मोहम्मद जुमर है आवाज अभी जो है बरसात की मौसम लगी हुई है गुलाम गाय जा रही.
0: ओके
1: फिर बहार
0: ओके जी कॉल ड्रॉप हो गई भाई आपकी.

0: ट्विस्टर जो है ना कुछ इस तरीके से है कि आपने कहना है कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू, ठीक है, कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू, ठीक है, ये कह के दिखाना है। जब ये कहेंगे तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को। नेक्स्ट कॉलर पे वैसे लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से
1: तो बात कर रहा हूँ,
0: मजाक कर रहे,
1: सागर बात कर रहा हूँ।
0: अरे सागर भाई कैसे, ठीक ठाक,
1: नाम में मजाक
0: असल में आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा था तो मुझे ना मजाक समझ आया। खैर मुझे ये बताइएगा कि गाना लेकर आएंगे कोई अच्छा सा?
1: गाना तो लेकर आया कल, आपने गाना सुनाया तो नहीं गया,
0: गाना सुनाया नहीं था, मिला नहीं होगा मुझे
1: तो बताया नहीं आपने कि मिला नहीं।
0: चले आज सुना दें, आज डिफरेंट सुना दें, कोई दूसरा सुना दें जो मिल जाए आसानी से।
1: हाँ दूसरा, मैं जिस दिन तेरा प्यार दिल से दिल हो मेरी जिंदगी है, जिस दिन बुला दे तेरा प्यार दिल से दिल हो

0: अपना किसका, जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिल आसुरी हो मेरी जिंदगी का।
1: ओके जी, ये रहा आपका गाना, थैंक यू सो मच।

0: अमेरिकी फौजियुनि खे मारण जी सूरत में ट्रंप जी ईरान ते शिदत सां हमला करण जी धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खे अमेरिकी फौजियुनि जे मौत जी तमामु घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरान जे हमले जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। फौजी क़यादत खे ईरान बाबति वाज़े हिदायतूं जारी करे छॾियूं आहिनि। नेतन्याहू खे अमेरिका में गिरफ़्तार न कयो वेंदो।
1: ईरानी घरू वज़ीर जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात जो इम्कान। पाकिस्तान आमद ते घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सिकंदर मोमिनी जी आजियां कई।
0: सऊदी फौजी इतिहाद पारां बहिरी नाकाबंदी जो ताक़त सां जवाब ॾियण जो ऐलान। सऊदी फौजी इतिहाद चवंदा त बाबर मंदब में जहाज जे तहफ़ जे लाइ सख़्त क़दम खया पिया वञनि। सऊदी इतिहाद जे सरबराह तुर्की अलमालकी चयो आहे त यमनी बंदरगाहनि ऐं एयरपोर्ट जी बंदिश जूं दावाऊं गुमराह कंदड़ आहिनि। सऊदी पारां हुसिन जे बहिरी नाकाबंदी जी मज़म्मत, यमनी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी हमलनि जो जवाब ॾियण जो ऐलान।

0: माण्हुनि चयो त शाख में पाणी कोन्हे, सारे आलो बिज सड़ी रहियो आहे, बासर असांजे हिसे जो पाणी चोरी करे रहिया आहिनि, पाणी फराह करे इंसाफ़ कयो वञे।
1: पिंगर वेझो नांग जे कखण सबब निगर फौत संदसि घर में कोहराम। ॻोठ हाजी सुलेमान हमदाणी में 15 महीने जे मुनवर हमदाणी खे नांग कखे वेधो, जिस्म में ज़हर पखिड़जण सबब निगर तड़पी तड़पी दम ॾेई छॾियो। लाश ज़रूरी कार्यवाही बाद घर पहुचण ते कोहराम मची वियो।

ऐं केटीएन न्यूज सत पारां हिकु वण सिंध अमर जे नाव जे अनवान सां भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान। 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण वारी मुहिम भरपूर नमूने सां हलाई वेंदी। मुहिम दौरान पंहिंजे घर, घिटी, पाड़े, शहर, पार्क ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे हिसे जो बूटो पोखे सिंध अमर खे तोहफ़ो ॾेई सघे थो। इन बूटे जी सार संभाल जो वचन बि कयो वेंदो। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि, शागिर्दनि, पोहतनि, उस्तादनि समेत समूरनि माउ दोस्त धुरनि खे वण पोखण वारे सदका जारिया में भरपूर शिरकत जी दावत।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण, ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

लीजिए, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और वापस आ चुके हैं जी एक गलत ब्रेक के बाद. और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होता है डैड इज बोलो तो माने. आज का टंग ट्विस्टर ये है कि कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू. ठीक है, ये कहना है कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े. ठीक है, कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू. ठीक है, ये कहना है. समझ के सुनेंगे तो बोल पाएंगे. 03000113488 के ऊपर कॉल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं. मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत सारे आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो विदाउट एनी डिले

इसके अलावा तालुका चंडरी गोड गुल हसन शर से हैदरबख्श शर हमारे से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हेलो स्वीट आरजी रुखसार, हाउ आर यू? योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल, सलामत रहे प्लीज, प्ले सॉन्ग मोहल्ले विचो कूच ना करें। ओके वी विल प्ले। ओके इसके अलावा जी विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदिलो, मोहम्मद हारून संदिलो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, थैंक यू सो मच। कमेंट्स की तरफ आते हैं तो गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाइस शो, नाइस। के अलावा भी कुछ बोल दिया करें। नूर हुसैन तुनियो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग रुखसार, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर। आपका शो बड़ा जबरदस्त है। गणेश कुमार हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम।

0: जो कमेंट आया, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, कल तो आप कमेंट कर रहे थे कि डेड बॉडी है, फिर उस लिहाज से तो आपको कब्रिस्तान जाना चाहिए था। अच्छा नजीर खोसा हमें सुन रहे हैं, गणेश कुमार हमें सुन रहे हैं, हिंदी रेडियो लिसनर क्लब नवाबशाह से हमें मेजबान साहिबा मीता खुशहुंदा और आशिक खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं जी, वेलकम टू दिस शो कहती हैं, वेलकम टू यू एज वेल। नजीर खोजो हमें सुन रहे हैं सोहबत पूर बलूचिस्तान से, कॉलर भी मौजूद है लाइन पे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मैं रिजवान बात कर रहा हूँ।
0: रिजवान कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: खैरपुर मीरत से।
0: खैरपुर मीरत से पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ जी पहली बार।
0: ओके प्रोग्राम सुनते हैं? प्रोग्राम सुनते हैं?
1: प्रोग्राम सुनते हैं बाजी।
0: टंग ट्विस्टर सुनाए?
1: टंग ट्विस्टर नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रहा, चले फिर कुछ और कहेंगे।
1: गाना सुनाओ।
0: चले गाना भी सुनाएंगे, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखे। 03000113488, मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो टंग ट्विस्टर बोलेंगे, ठीक है, वही कॉल करें, उन्हीं की रिसीव करूंगी। 03000113488 नेक्स्ट। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: हैदरबख्श बात कर रहा
0: हूँ। ओके हैदरबख्श भाई कैसे, ठीक ठाक? टंग ट्विस्टर बोलेंगे सुनाए? तो बोले
1: एक बार रिपीट कर।
0: कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के सुन तो ले
1: जी जी।
0: कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू।
1: कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े।
0: यस
1: कटे टुकड़े के कटे कच्चे कद्दू।
0: यस
1: कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़े कच्चे कद्दू, कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़े के कटे कद्दू, कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, टुकड़े के कटे कद्दू।
0: नहीं नहीं नहीं, कच्चे कद्दू के कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू,
1: कटे टुकड़ों के कटे कच्चे कद्दू,
0: कटे कट्टू।
1: सॉरी हम नहीं कर पाए।
0: ओके थैंक यू सो मच, और कुछ कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अली गुल महर, पहली दफा कॉल कर रहे हैं भाई, प्रोग्राम सुनते हैं, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका प्रोग्राम का, क्या नाम है?
1: गुलजार।
0: गुलजार ओके फिर ठीक है। अच्छा टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे? ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू, वही लोग कॉल करें जो टंग ट्विस्टर बोलेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक और ट्राई करेंगे जी। हेलो ओके हेलो हेलो
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
2: बाजी, वफा।
0: ओके जी वफा भाई की कॉल ड्रॉप हो गई है, वेरी बैड, एक और ट्राई कर।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से
2: मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
2: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जी रुखसार. आपका मेरे साथ पूरी एक बजे तक का. और इसके अलावा आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स के थ्रू. और हमारा सेगमेंट बोलो तो माने जिसमें एक टंग ट्विस्टर बोल के दिखा रहे हैं आप लोग. और आज का टंग ट्विस्टर ये है कि कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े और कटे

0: क्या आगे कॉल्स लेते हैं 0300-01-3488 के ऊपर. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: इमाम इकबाल आचारी मेहरपुर खान.
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी बाजी, हर रोज.
0: हर रोज सुनते हैं, कैसा लगता है?
1: बाजी बहुत अच्छा.
0: क्या नाम है इसका?
1: जिंदगी गुजार है यार दे रुपा.
0: वाह वाह वाह वाह. ओके, अच्छा टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
1: जी जी बाजी.
0: तो बोले
1: जी, बाजी कटे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे कटे टुकड़ों के कटे कद्दू
0: नहीं, कटे टुकड़ों कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू.
1: अभी कटे कटे टुकड़ों के कटे टुकड़े,
0: जल्दी जल्दी.
1: हाँ, कटे टुकड़ों के कटे कद्दू, कटे टुकड़ों कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कटे कद्दू.
0: ऐसे कहना है कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू, कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू. ठीक है, इस तरह कहना है, जल्दी जल्दी.
1: कटे कटे टुकड़ों के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कटे कटे कद्दू, कटे टुकड़ों के कटे टुकड़े, कटे टुकड़ों के कटे कटे कद्दू, कटे टुकड़ों के कटे
0: कटे कटे
1: टुकड़े, कटे टुकड़े के कटे कद्दू.
0: चलें कुछ और कहेंगे? कुछ और कहेंगे?
1: नहीं, बढ़िया हाल आपको खुश रखे, ऐसे प्रोग्राम करते रहो.
0: ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. ये जो कच्चे और कट्टे के बीच में ये जो अटक रहे ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है.

0: कॉलर इंटरटेन करते हैं एंड द नेक्स्ट कॉलर हेलो
1: हेलो
0: वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से
1: सफदर बलोच मेरे से
0: सफदर बलोच भाई कैसे ठीक ठाक
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं टंग ट्विस्टर सुनाए
1: जी जी
0: बोलेंगे
1: जी जी
0: बोले
1: अरे कच्चे कद्दू के कच्चे टुकड़े टुकड़े कच्चे के कद्दू कच्चे
0: आपने तो पूरा ही खराब कर दिया सारा खराब कर दिया आपने तो आपसे तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी हमारे सुनने वालों ने अब जो कॉलर आया अब ये तो सही बोलेगा ही बोलेगा आपने ही खराब कर दिया हाँ जी
1: आप सुना एक बार
0: मैं दोबारा बताऊं कच्चे कद्दू के कटे टुकड़े कटे टुकड़ों के कच्चे कद्दू
1: कच्चे कद्दू के टुकड़े कच्चे
0: टुकड़े कच्चे नहीं कच्चे टुकड़े
1: कच्चे टुकड़े कच्चे कद्दू
0: आज नहीं हो पाएगा आपसे आप आपको ना एक साल लगेगा चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा आप कुछ और कहेंगे बोले
1: कहूँगा
0: बोल दें जल्दी से बोल दें
1: मैं गाना कहूँगा
0: ओके गाना सुना रहे हैं अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच ना सोचेंगे तो सिर्फ सोचने में ही हमारा टाइम खत्म हो जाएगा निकल जाएगा और जब टाइम निकल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारन जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिलाउन जो शानदार ऐलान हाने पंहिंजे बारन खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM आई साला डीपीडी जने ते बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम एलएचवी सीएमडब्ल्यू आईसीएनए आई खास गाल मुस्तहक शाग
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
2: यार कुछ दिन खां जेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द अरिया जा
0: बिल्कुल किरी डेक्स मरम मुतासर थे हंड ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
3: सिर्फ चेल ऐ सूर लाए
0: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ है सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए बे फायदेमंद आहे
3: इस्तेमाल किए कजे
0: मुतासर थे हंड ते डी में ब खा ट्रे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स पॉइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अली वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स पॉइंटमेंट

0: बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स के थ्रू. लास्ट में वापस आ चुके हैं और टाइम बहुत लिमिटेड जो है रह चुका है हमारे पास और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला गया कैसे कब किधर चला गया. लेकिन कुछ मैसेजेस और कुछ कमेंट्स आप लोगों के, सफदर बलोच ने बहुत सारे कमेंट नहीं सॉरी मैसेज कर दिए. शेर पे शेर फेंके जा रहे हैं और हम कर रहे हैं इसको कैच. ओके, इसके अलावा जी लास्ट लकी कॉलर्स को भी एंटरटेन करते हैं और चेक करते हैं कि लास्ट में लास्ट लकी कॉलर कौन है, कहां से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से?
1: आसिफ अली चाचा लास्ट में बात कर रहा हूँ.
0: आसिफ अली चाचा
1: आप सुना है?
0: मैं बहुत अच्छी. मुझे बताएं कि लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी अच्छी बात नहीं है, आप लोग का सवाल किसी को दुख न दो.
0: जी
1: किसी को दुख न दो.
0: किसी को दुख ना दो.
1: नहीं.
0: ओके, वेरी
1: ख्याल रखो.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. आप भी बहुत ख्याल रखें.

वी आर राइडिंग इन हॉर्लिस इन हवाई और इसी के साथ नेक्स्ट गाना हम प्ले करेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग. और नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग कौन सा होना चाहिए? वेयर ओके जी, लास्ट में हम प्ले करते हैं अमानत अली का सादगी और इसी के साथ हम फाइनली आपसे लेते हैं जी इजाजत. अच्छा, आज के टंग ट्विस्टर के जो सेगमेंट के विनर है ना वो है हैदर बख्श. हैदर बख्श ने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा बोला और सभी के लिसनर बोल पाया आज का टंग ट्विस्टर. ठीक है जी, सो इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद सेम आरजी. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

अमेरिकी फौज जा ॾहीं रात बि ईरान ते हमला। ईरान जे फौजी कमांड वर्कर्स मिज़ाइल ऐं ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि खे निशानो बणायो। असफहान, चाबहार, कोनाक, कशम, सेरक ऐं बंदर अब्बास ते अमेरिकी फौज जी बमबारी। सेंटकॉम मूजिब हमलनि जो मक़सदु आबिला हरबुद में ईरान जे बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी सलाहियत खे कमज़ोर करणु आहे। पेंटागन पारां ईरान ख़िलाफ़ जारी जंग में 100 फौजनि जे ज़ख़्मी थियण जी बि तस्दीक। इराक जे शहर अरबैल में अल हरीर एयरबेस वेझो बारूद सां भरियल ईरानी ड्रोन किरायो वियो।

अमेरिकी हमलन के जवाब में ईरानी फौज जा कुवैत बहरीन उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डन से हमला अमेरिकी रेडार दिफाई निजाम एफ 15 जहाज तबाह करण की दावा पासदार इनकलाब है तो उर्दन में अमेरिकी फौज के कॉम्प्लेक्स से हमले में अमेरिकी मारजी वन बहरीन में अमेरिकी कंपनी एमेजोन के डेटा सेंटर में भी तबाह कर वो है खिते में अमेरिका लाइ का भी जगह ना है अमेरिकी फौज नुकसान का बचण चाहे थी तो खिते मां निकरी वे

0: आबदा हरबत जे दाखिले रस्ते तां गुज़रण जी कोशिश दौरान बिन तेल बरदार जहाज़नि खे धमाकनि बाद बाहि लॻी वई। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी जो चवण आहे त ओमान वेझो हिकु ऑयल टैंकर ते हमिलो थियो आहे। जहाज़ जो अमलो महफ़ूज़ आहे, लाइफ बोट्स में सवार थी निकिरी वियो।
1: ईरान सां छिकताण जा असर अमेरिकी तेल ज़खीरनि ते पवण लॻा। अमेरिका में तेल ज़खीर घटिजी 43 ॾींहं जा बचिया। बैंक ऑफ अमेरिका जी रिपोर्ट मूजिब पेट्रोलियम ज़खीरा 4 ॾहाकनि जे घटि सतह ते पहुची विया आहिनि। अमेरिका वटि हाणे रुगो 43 ॾींहं जा ज़खीरा बचिया आहिनि, जेके 10 ॾहाकनि जे घटि सतह ते आहे।

पाकिस्तान के दौरे से मौजूद ईरानी घरू वजीर जी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम बुनी से मुलाकात का इम्कान। पाकिस्तान आमद से घरू वजीर मोहसिन नकवी सिकंदर बमनी की आजियां कई। मुलाकात दौरान इतने की सूरत समेत बितरफन लागपन से गालू क्यों।

क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कसीदा यहाँ पर आप सुन रहे थे और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। आप जिंदा है हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जनाब बढ़ते हैं जरा प्रोग्राम में आगे और आगे बढ़ते बढ़ते आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। तो टॉपिक अगर बताऊं तो आज मेरा ये जरा दिल था कि आप लोगों से ये सवाल पूछूं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आप लोगों से जान ली हैं, या आप लोगों की पसंदीदा चीजें, आप लोगों की ना पसंदीदा चीजें और ऐसी बहुत सारी ऐसी आदतें जो कि आप लोगों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन आज आप जरा मुझे ये बताने वाले हैं कि आपके जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा कौन सा था। जी, क्योंकि आज हम जरा अपनी जिंदगी की कुछ अच्छी अच्छी यादों को ताजा करने वाले। वैसे तो बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो भाई हमेशा उदास रहते हैं। उदास रहने की जो है ना, जैसे आप लोगों को ऐसा पता है कि उदास रहने की जो है ना बहुत सारी वजूहत होती है, लेकिन कुछ वजूहत ऐसी भी होती हैं जो हमें अपनी जिंदगी में ऐसी मिल जाती हैं जो हमें खुश रखने की जो ना वो कोशिश में होती हैं। तो अगर आप भी उन वजूहत को तलाश करेंगे तो आपको वो वजूहत जरूर मिल जाएंगे और जिंदगी में खुश रहा करें। और इसी के साथ साथ मुझे आज ये बताइए कि जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा आपका कौन सा था। अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाएंगे, कॉल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और पेज को सर्च कीजिए, आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। आप जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आपके यहाँ यानी कि ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमें सुन रहे हैं तो आपके यहाँ

0: आईटीएच ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या अभी तक नहीं? अगर मिल रहे हैं तो भाई परचेज किया या फिर अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हैं? उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो तो उसके लिए आपको नंबर्स बताए जाएंगे जी प्रोग्राम के अंदर जो कि आप डायल करेंगे तो इजीली आके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे लोगों को बता सके कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। देखते हैं कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, बंदा बरोज जो हम पे गुजरी है हम बताएं तो क्या तमाशा हो, आज हम भी तेरी वफाओं पर मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो, तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाए तो क्या तमाशा हो, वक्त के चंद साथी सागर लौट आए तो क्या तमाशा हो। ओके वहीद वफाई हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी क्या हाल चाल है आपके? माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम फ्राम जेकब आबाद से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू, खुश आमदीद कहते हैं। और चाचा खाले चुने जो हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिडो, हाउ आर यू, हो फाइन, यस आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में। और अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद कहते हैं सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम एंड मौला अस्सलाम अदर। और उसके अलावा अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाय सिद्रा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, थैंक यू जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। हुसैन मला हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कराची से आप हमें सुन रहे हैं हुसैन, आपको वेलकम कहा जाता है। आकाश अली हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो आकाश कैसे हैं। और हैं जी हमारे साथ इकबाल लाशारी, विलेज सोनो खान लाशारी, मीरपुर खास से आप हमारे साथ संदीप जी, खुश आमदीद। अब्दुल गफूर कैसर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अशफाक कहते हैं योर ब्यूटीफुल स्वीट वॉइस, थैंक यू। अखलाक बलोच हमारे साथ ही, नाइस यू, थैंक यू अखलाक भाई। मौलाई मुजाहिद बोजार आ चुके हैं, कहते हैं आई एम बैक, अस्सलाम वालेकुम, खूब चूसल से हैं जी आप हमारे साथ, कहते हैं माँ ठीक आए, ताबदायक हैं यार, ठीक ठाक आयो, मजे में आयो, आई न्यू हाल अवाल। व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया या फिर अन्य तीन सिर्फ सोचो ही पाया, कहते हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम, कहते हम भी आपको जनाब दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। और साथ साथ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं कि आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी खूबसूरती जरा बढ़ती जाए। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ रुखसार मरी मीरपुर खास से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, आपका शो सुन रहे हैं सब घर वाले, मौसम बहुत अच्छा है मीरपुर खास का जी, मौसम तो आज यहाँ का भी अच्छा है, चलें जी मौसम को एंजॉय कीजिए और हमारा प्रोग्राम भी एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ साथ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करके बताइए आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, और बताइए जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा कौन सा था आपका। और अनवर कहते हैं पोएट्री, मेरा बस चले तो तेरी अदाएं खरीद लूं, अपने जीने के वास्ते तेरी वफाएं खरीद लूं, कर सके जो हर वक्त दीदार तेरा, सब कुछ लुटा कर वो निगाहें खरीद लूं, क्या बात है जी, क्या बात है। अशफाक खोड़ो क्या कहते हैं, एक्सलेंट एडवाइस फ्रॉम आरजे सिद्रा मुस्कान, बिल्कुल जी मेरी एडवाइस पर आप अमल करें। अच्छा साजन कुमार हमारे साथ ही मीरपुर खास से, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुशामदीद। और हैं जी मोहम्मद जमान भाई, ऑसम शो, थैंक यू मोहम्मद जमान भाई। और जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, वासु भाई भी आ चुके हैं, वासु भाई कहते मुझे प्यारी भेड़ा कीड़ा हाल है, जब प्यारा भासफा भली आए था बताया कि आयो। अखलाक भाई कहते हैं अंसर जब हमें पहली बार, अच्छा क्या बात है, वो भाभी थी या कोई और। अली मुर्तजा कहते ओ हो माम भी बीठो आया हे ना बीहो ना बाबा वेरो वेरो पांजी पांजी सीट दे, सीट संभालियो जी, अगते रश थी वने तो पुतां के पांजी सीट मिलियल हो जे, समझो था। आई हाने हिते जको टाइम थियो आए असा वनु था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वटू था, उनका पर वापसी जल्दी तुम्हारी मोटी,
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
2: क्या आप आबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर, फकीरी मरहम जनाने वालों की फखरिया पेशकश,
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद,
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार,
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आप की खूबसूरती का फैन वाइट एज। ट्वेंटी थ्री

0: मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मोहम्मद उमर बुग्यो। ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर ए तजुर्बेकार डॉक्टर, थिएटर, अल्ट्रासाउंड, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स, सर्जिकल ए मेडिकल सहूलतू, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, इंसानियत की खिदमत असांजो मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुग्यो, ट्रस्ट हॉस्पिटल, मीरवा रोड वेझो, डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाए 03413429824।
2: आँखों के सबसे बड़े इदारे के मशहूर और तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जरियल लेज़र फेको, काले पानी का इलाज और ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आँखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक। इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेजर आंखों का अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। फोन नंबर 03032617077।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।
5: ओ बड़ा चासी के पहला प्यार हुंदा फिर व्या।
6: ओ तो किदे नाल प्यार करना?
5: थोड़े नाल। अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
6: ये तो है, उन्हें जो व्या नहीं हुंदा

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: यार कुछ दिन खां जेल जो सू और जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द आया
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंदते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
2: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए बे फायदेमंद है
1: इस्तेमाल किए कजे
2: मुतासिर थे हंदते डी में ब का ट्रे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अडी वेजे स्टोर का नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
0: जिंदगी गुजार एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर
3: ये हमारे जो इतने प्यारे लोग हैं वो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर पहले से कर रहे हैं ओके जी इसी के साथ साथ जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया उनको वेलकम कहा जाता है और साथ ही साथ जरा टॉपिक भी रिपीट करते हैं मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया यानी कि प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा कौन सा था आपकी जिंदगी में सबसे हसीन लम्हा कौन सा गुजरा है जिसे आप याद करके खुश होते हैं आज भी खुश होते हैं वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो कि हमें सिर्फ दुख देती हैं उन्हें याद करके हम सिर्फ उदासी हो जाते हैं लेकिन क्यों ना हम कभी कभार अपनी जिंदगी के गुजरे हुए हसीन लम्हात को भी याद कर ले इससे भी अच्छा असर पड़ेगा हमारी जिंदगी के ऊपर तो बिल्कुल आज आप मुझे बताइए आपकी जिंदगी का हसीन लम्हा जिसने आपको खुश कर दिया हो ओके जी इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को बताएंगे अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यहां से स्टार्ट हो जाती है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे हैं प्रोडक्ट या फिर अभी तक नहीं मिल रहे अगर मिल रहे हैं तो अच्छी बात है परचेज कीजिए अगर नहीं मिल रहे तो आपको जो नंबर्स बताने लगी उन नंबर्स के ऊपर जरा रابطہ कीजिए और रابطہ करने के बाद ऐसा होगा कि आप उन्हें बता पाएंगे कि हम फलां जगह पर रहने वाले हैं यहां पर नहीं मिलते वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट तो वो अवेलेबल करा देंगे तो पहले जो नंबर आपको बताया जाता था उस नंबर को थोड़ा कुछ दिन जो है ना हमने ऑफ कर दिया है अब दूसरे नंबर आप लोगों को बता रही हूं जरा इस नंबर के ऊपर जो है ना आप लोगों ने रابطہ कर लेना है तो अगर आप डायल करना चाहते हैं तो डायल करेंगे 03-50-25-907 अगर ये नंबर आप डायल करें बंद मिले या फिर ये ना उठाया जाए तो आपको दूसरा नंबर भी बता रही हूँ वो भी आप ट्राई कर सकते हैं और दूसरा नंबर है 0-9-0-2-7-3-8-4-3-0-9 ये नंबर डायल कीजिए ताकि आप भी जान सके कि भाई जान कहां कहां पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए और इसके साथ साथ अवेलेबल जरूर करिएगा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ताकि आप कि स्किन जो है वो क्लियर हो जाए और क्लीन हो जाए, क्योंकि वाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है और मिल्क है, जो चीजें मिलकर आपकी स्किन पर जो है वो बहुत अच्छा सा इफेक्ट लाने वाली है और आप लोगों की खूब सूरती में इजाफा लाने वाली है। उसके अलावा वाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है और व्हाइट एश ब्यूटी सोप जनाब ये भी एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है। ये व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का डिटो कॉपी है, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जब आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाएंगे ना तो आप तो बिल्कुल उसी के जैसा व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी मिल जाएगा। अगर हाँ आप व्हाइट एज का फेस वॉश लगाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना ये विटामिन सी से तैयार किया गया है। इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है और ये क्रीमी सा फेस वॉश है जिसे इस्तेमाल करेंगे आप तो आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, एंटी एजिंग के लिए है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई हमारी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी स्किन जो है ना वो उससे भी ज्यादा ओल्ड नजर आती है, तो अगर आप भी अपनी उम्र से कम नजर आना चाहते हैं तो व्हाइट एज का विटामिन सी का जो फेस वॉश है ना ये ट्राई करके देखिएगा। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई गर्मियों का सीजन है, मेकअप नहीं लगाया जाता, प्रोडक्ट ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद मेरी जान। व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है, 30 विटामिन्स इसके अंदर मौजूद है जनाब, 30 विटामिन्स के कैप्सूल्स जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B3 है, विटामिन डी है और उसके अलावा सनस्क्रीन भी ऐड की गई है ताकि आपको खूबसूरत भी मिले और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे। तो इतने जबरदस्त तरीके से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखा है जी व्हाइट एज वालों ने कि मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जिसे आप फेयरनेस क्रीम के तौर पर इस्तेमाल जिद्दी पुराने जो है ना वो निशानात अगर आपके चेहरे पर मौजूद है वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा पर्सनली बता रही हूँ, मेरी ना भांजी है वो यानी कि बच्चे होते हैं ना छोटे तो वो ऐसे फेस पर जो है ना नाखूनों से कट लगा लेते, तो मेरे फेस पर ना उसने एक कट लगा लिया था, तो मैं ये सोच रही थी कि ये तो भाई अब जाएगा ही नहीं क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि अगर कट लग गया एक मरतबा तो वो जाता ही नहीं। तो उसने नाखून से बड़ी बुरी तरह से कट लगा लिया था, तो मैंने यकीन जाने मतलब आजमाई हुई चीज है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन लगाया और फिर वो कट जो है ना मेरा गायब ही हो गया है समझ लो। अगर आप भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आजमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आजमा के देख देखिएगा वो कट का निशान हो, जलने का निशान हो, एकनी का निशान हो या फिर कितना जिद्दी एकनी हो, हर तरह की चीजें जो है ना वो फेस से रिमूव हो जाती, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और आप खूबसूरती का एहसास फील करते हैं। तो लाजमी ट्राई करके देखिएगा ये जो व्हाइट के तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोगों के खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ऑल स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मिलने की सूरत में आपको जो नंबर बताए जा रहे हैं उनके ऊपर रابطہ कीजिए ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए और हमारे लिए भी। अच्छा एक और आप लोगों के सरों के ऊपर बम फोड़ दूं।

बिल्कुल जी, आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइटिश एंड टीस्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बताइए ना, शर्माते क्यों है? ओके जी, सो मैं क्या बताने जा रही थी, मैं ये बताने जा रही थी कि आज जो है ना नेटवर्क का इश्यू, तो आप जानते हैं कि भाई काफी दिनों से नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, तो आज थोड़ा सा जो हमने है ना वो जुगाड़ लगाकर आप लोगों के लिए लाइव पोस्ट को जो है ना वो सही तरीके से ऑन एयर करने के लिए हमने जो है ना वो दूसरा पीसी, जहां से मैं आप लोगों के गाने लगाती हूँ, सर्च कर करके डाउनलोड कर करके मरती हूँ आपके गाने लगाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरी कदर नहीं होती, तो वो आज सिस्टम जो है ना थोड़ा सा ऑफ है, तो ये बताना चाह रही थी कि आज आप जो गाने बोलेंगे ना वो शायद प्रोग्राम में आप लोगों की फरमाइशें ना चल सके। 16 गाने बोलेंगे जो पहले से मेरे पास मौजूद है तो वो मैं लगा सकती हूँ, बाकी जो ऐसे गाने हो जो मेरे पास है नहीं तो वो मैं नहीं लगा पाऊंगी। तो ये बम था जो फोड़ना था, अरे दिल टूट्स वाली फीलिंग आती होगी लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा, एक ही दिन का सवाल है। अच्छा जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए।

अच्छा मोहम्मद जमान, आपने टॉपिक के पर बात करी है, वैसे तो हम फनी आंसर देते हैं लेकिन आज ऐसी टॉपिक पर बुआ संजीदा से आपको इजहार करते हैं।

अच्छा हुसैन मल्हा भी एक आरजे हैं तो उनको भी वेलकम कहा जाता है जी. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. जब एक आरजे दूसरे आरजे को सुनता है तो वाकई अच्छा लगता है. नजीर को समय सुन रहे हैं बलूचिस्तान से. नजीर भाई आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है. लिखते हैं ऐसा दरवाजा बने जिससे खैर दाखिल हो. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे. अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे. क्योंकि अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है. और बराए मेहरबानी आजकल की मोहब्बत ना समझ बैठिएगा. बिल्कुल जी, सही बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी है. और उसके अलावा अली मुर्तजा के थे टॉपिक पर जिस दिन

आज एक बात की मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपनी पसंद के गाने लगाऊंगी। समझ रहे हैं।

बिल्कुल जी भाई। व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जी, ताकि आपको ये एहसास हो कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के मुताबिक तैयार किए गए। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सबसे बात बेहतरीन ये है कि नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए, ऐसा नहीं कि इनके अंदर केमिकल डाले गए हैं आप लोगों को जल्दी में गोरा बनाने के चक्करों में। इन ऐसे ताकि जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे जरा दूर भागा करें। अक्सर आपकी स्किन जो होती है ना वो थोड़ी सेंसिटिव टाइप सी होती है या फिर

व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी उनसे फायदा उठाते हैं, और जो चीज फायदा उठाने वाली ना उसे उठाया करें, इंसानों से बस फायदा मत उठाया करें, क्योंकि आगे जाकर आपको वही सब वापस लौटाना होगा जो आपने लोगों के साथ किया है। तो लोगों से फायदा थोड़ा कम उठाइए, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट से फायदा उठाइए जो वाकई फायदा उठाने वाली चीज है। रमजान भाई हमारे साथ मौजूद है। रमजान भाई आपको वेलकम कहा जाता है। इसी के साथ से टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक के जाने में जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी वापस आप लोगों के पास आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए, और साथ ही ये पूरी पूरी 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: होगा या तब फैसला।
1: It's 2 PM. This line check is brought to you by
2: Fakiri and
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream.
3: अमर की फोवदी का नुकसान खां बचन चाहे थी तो खिते मान निकरी वने।

हर मजे आखिरी रस्े गुजरने की कोशिश दौरान बिन तेल बरदार जहाज के धमाकन बाद बाह लगी वही। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी जो चवण है तो ओमान वेझो एक ऑयल टैंकर से हमलो थो है। जहाज जो अमलो महफूज है, लाइफ बोट्स में सवार थी निकली वो।

असर अमेरिकी तेल ज़खीरन ते पवण लगा। अमेरिका में तेल ज़खीर घटजी 43 ॾींहं जा बचिया। बैंक ऑफ अमेरिका जे रिपोर्ट मूजिब पेट्रोलियम ज़खीरा 4 ॾाकनि जी घट सतह ते पहुची विया आहिनि। अमेरिका वटि हाणे रुगो 43 ॾींहं जा ज़खीरा बचिया आहिनि, जेके 4 ॾाकनि जी घट सतह ते आहिनि।

0: whitish beauty products.
1: आलम वठी खरीद करियो
2: मोहम्मद उमर बुगियो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग इन अलाइड हेलारी आहन लेबोरेटरी टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन क्रिटिकल केयर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर दाखिला फीस 5000 महवार फीस 4000 रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलिएटेड विद
3: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो
4: त पोइ छा अञा ताईं फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थी
3: न यार छा वाकई फ़ाइदो करे थी
4: बिल्कुल अदा कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी सूर सोडियम जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे
4: रुगो मुतासिर हंध ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए ऐं आराम जो एहसास वच ऐं बुध जेकरे उमरे या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सां गॾु खणी वञा
3: वाह पोए अॼु ई वठींदसि
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
0: GFM 90.8

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है और सेंसिटिव स्किन की वजह से आप काफी सारा परेशान होते रहते हैं, तो परेशानियों को जरा गुड बाय बोलिए, क्योंकि अब आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती आपको मिल जाएगी। ना सिर्फ ऐसा सीन बन जाएगा कि आपकी खूबसूरती आपको मिलेगी, बल्कि ऐसा सीन बन जाएगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते ही ना, तो सिर्फ दो दिनों में वाजे नतज के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपना जो है ना वो कमाल आपको दिखा देगी। और बात की जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस तरह तैयार की गई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर जदीद अज्जा मौजूद है जनाब, जैसे कि विटामिन ई बीट, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, उसके अलावा अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, जो कि आपकी जल्द को जो है ना चमकदार बनाने के लिए, डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, और जो आपकी स्किन है जो कि सांवली सी हो चुकी है उससे ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हर तरह से जो है ना आप लोगों के चेहरे का ख्याल रखने के लिए तैयार की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और उसके अलावा जब आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके चेहरे की जो स्किन है ना वो आपको महसूस होगा कि भाई वाकई फर्क जो है वो नजर आना स्टार्ट हो चुका है सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। तो दो रातें अगर आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको अच्छे खासे जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ बिल्कुल जी लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ खवातीन ही लगाएंगे, मर्द हजरात भी लगाएंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, अपने चेहरे को चमकाएंगे और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाएंगे। उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। साथ में अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं तो डी स्किन फेस वॉश भी लगाइएगा। डी स्किन फेस वॉश की तरफ आते हैं, तो डी स्किन फेस वॉश आप लोगों को बताते चले कि इतना जबरदस्त फेस वॉश है ना कि आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप देख कर ही बोलेंगे कि भाई वाकई शायद तो कमाल जी यार। ओके जी, सो डी स्किन फेस वॉश जेको आहे हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल आहे, तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे क्लीन बणाईंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे क्लींस कंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज भी कंदो आहे, तव्हांजी स्किन जे अंदर तक वञी तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न सफ़ा खूबसूरत बणाए छॾींदो आहे, तव्हांजी स्किन में जेके प्रॉब्लम्स आहिनि सभु दूर थी वेंदा आहिनि, ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा वी आई पी थी वेंदी आहे, गोरी चिटी त थी वेंदी पर तव्हांजी स्किन ते जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उहे बि दूर थी वेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो त डी स्किन फेस वॉश बि लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो जी, तव्हांखे ख़बर पए त बाबा तव्हां

4309 ही नंबर भी तव्हां डायल करे सघो था। ही बन नंबर आहिनि जेके तव्हांजी आसानी जे लाइ आहिनि। तव्हां इन नंबर ते राबितो कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो जी तव्हांखे आसानी थिए। बाबा तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा त हुन मां इहो फ़ाइदो तव्हांखे मिलंदो त तव्हां बसि वेंदा ऐं तव्हां वठी भॼंदा मोटी ईंदा, सम्झो था। इहो तव्हांखे टेंशन न हूंदो त बाबा हाणे असां काॾे शहर वञूं त वठी अचूं, अलाए कहिड़े शहर में मिले थो, शहर वञो बि त अलाए हुजे बि अलाए न हुजे, त तव्हां नंबर ते हिकु दफ़ो राबता करे वठो। राबितो करण खां पोइ तव्हांखे मालूमात मिली वेंदी ऐं तव्हां राबितो कजो प्रॉपर, या त तव्हां कॉल कयो या त तव्हां मैसेज छॾियो, ठीकु आहे।

ममताज बलाई जी आवाज में तमाम गानो बुधो था जेके मानू दोस्ती में दगा कंदा ने दोस्ती में धोखो रीना ने नन मानन के बस छाक जी आने चलो जी तमाम जो मैसेज आए नहीं पैनल ते चू था त तमाम जे पैनल ते खोड़ सारा मैसेज जी रश आए आकाश मोर से खलाक बलूच भाई कहते सिद्रा प्लीज प्ले अच्छा भाई यो गानो बिल्कुल हुयो को न मोट त असा ही वारो गानो बुधुंदा सही है आई तवाज मोबे तुन प्रोग्राम बुधो पे अच्छा अच्छा खाले तुम्हारे साथ के गाने जी तकलीफ दिनासी यो मिलियो त हलाइनासी न मिलियो त वरी पोचे जो पाने नसीब के आई उन खा अलावा हेंसी गोट मोमन थेबु मोमन तैयब थेबु खा हबीबुल्ला थेबु तवाज जो शो वेरी नाइस आहे सलाम तवा के वालेकुम अस्सलाम भा तवा के और गोट अली भी मदद नी गोट अली मोहम्मद मीरानी सारा गलत हो गया गोट मोहम्मद उमरानी लाड़काना से वहीद अली और सईद अली सलाम भाजी आप कैसी वहीद भा आई सईद भा मां सफा भलिया ता मुजा की आयो खुश आयो डियो हाल हवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई तव कोन लाड़काने में तो मिले थी रेशम गली मां वनी बैठी छोनी ओके जी ये हमारे साथ है हबीबुल्ला थे वो सॉन्ग बुधराय जो तेरा मेरा है प्यार अमर हाजिर हाजिर और हेंची गोठ मोमंद तेबू खां हबीबुल्ला तेबू भाई कहते हैं सॉन्ग बुधराय जो हाजिर भा गानो बुधरायो था तांखे एकड़ो मैसेज ता 10 दफा शेयर करे छड्यो आए और अब्दुल्ला महर कहते मेरे को खासी बाजी तबीयत सही नहीं है दुआ कीजिए सही हो जाओ इंशाल्लाह भा जल्दी तमा सही थी वेना ख्याल रखो पांजो दवा बवा खाओ और रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदी मुजा जवाब जरूर पढ़ंदा कयो जिंदगी जो हसी लम्हो जदे बचपन में पेरियो दफो खां पोए तां जो मैसेज मिसिंग पार्ट थी वयो आए मां किए पढ़या दसियो मुगे मां चाया पे तवा पढ़ा पर मां नथी पढ़ी सगा अच्छा ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मस्कान फुलजी स्टेशन खां फौजी पठान खान खुशो मारे साथ गानो बुधाईंदा तेडी अच्छा चले मैं कोशिश करूंगी लगाएंगे ये वाला गाना मिल गया तो और हमारे साथ प्यारली जरवार भाई वालेकुम अस्सलाम कहती बाजी आप कैसी हैं माशाल्लाह बाजी इतनी याद रहती हैं हमारे जो ये तो आप भाइयों की मोहब्बत है ना कि आप हमें इतना याद रखते कहते हैं कि अपनी बेटी इफ़त बतूल की वजह से SMS सेंड किया था क्योंकि नानी अम्मी के घर थी याद आई बेटी की तो उस याद के साथ आप भी याद आ गई अल्लाह हाफिज फी अमानुल्लाह थैंक यू सो मच प्यारे भाई आप इतना प्यार करते हैं और खुश रहें हंसते मुस्कुराते रहें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहें विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो रऊफ मक्सी का गाना तो लगाइए लगाते हैं जी और ये अम्मी लो सज्जन हमारे साथ हैं माशी गोठ जान मोहम्मद माशी मोरो जलाल चांडियो हलाया जो बिल्कुल भामा कोशिश किया थी तुम सभी भाईरन जो फरमाइशों प्ले करे सकूं सोनी कहती आप ही जाने में आ गई आप ही गेस कीजिए मैं हाथों में मेहंदी क्यों लगा रही हूँ ओहो मुझे पता चल गया।

बाबा न खयो ये न खयो डेज स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तव्हांजे एरिया में नथी मिले त तव्हां अवेलेबल करायो जेके नंबर तव्हांखे ॿुधायो नंबर ते तव्हां राबितो कयो ऐं जेको पुराणो नंबर आहे न उहो तव्हां थोरो डायल न कजो छो त उहो नंबर फ़िलहालु थोरो मसरूफ़ आहे ऐं तव्हांखे जेके हाणे नंबर ॿुधाया वञनि था प्रोग्राम में उन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो कॉल कयो या फिर मैसेज कयो उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा असांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले मीरपुर ख़ासि वारा आहिनि मोरो वारा आहिनि लाड़काणे वारा आहिनि सखर वारा आहिनि मटियारी वारा मेहरापुर वारा मातली वारा जितां किथां जा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया त सभु इन नंबर ते राबितो कयो उन्हनि खे ॿुधायो बाबा किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी किथे नथी मिले जीअं अवेलेबल थी वञे तव्हांजे लाइ आसानी थी वञे तव्हांजो फ़ाइदो आहे नी सोचो ॻाल्हि खे ज़रा

भाई निगत तो मुझे वैसे ही पसंद है, लेकिन ये जो निगत का गाना है ना, ये बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ चाचा, इसलिए शायद मेरा शो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। यूनिक चीजें लोगों से हजम नहीं होती। और अशफाक कहते हैं फिर तेज बारिश, इस बारिश, अच्छा क्या बात है, आपके यहाँ तेज बारिश हो रही है, वाह साईं वाह, थोड़ी आसानी भी मोक लियो भला।

सच्ची गाला हकीकत है। ओके री पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना। हेलो और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। तमा करो प्रोडक्ट लगायो पया बुधायो त खबर त पवे। राशिद खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं जी, वेलकम कहते हैं आपको। अच्छा ए मंसारी कहते हैं बिल्कुल इट्स ट्रू, लोग वेरिएशन मांगते हैं जना। बिल्कुल जी ऐसा ही है, वफा सही था जो हबीबुल्ला तेबू भाई वालेकुम अस्सलाम, नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम।

वा वासाई वा अखलाक भाई कहते हैं क्यों शेयर करें, हमारे पास भी नेट नहीं, जालिम डिसो था जालिम डिसो था अल्लाह सही मारे पूछने दो अजू ने कहा अलावा इन्हीं तुम्हारे चैट करी चली है बाबा कमेंट्स ने तुम्हारा कमेंट मैथे भजी गया था मुखे ने चेजो अच्छा दोदा अली भाइयों में सुन रहे हैं हाय हेलो

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो, मेरे खास मठियारी सखर, मेरा पर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है. ओके नहीं तो मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं. तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन तमाम तो लोगों को बताते हैं जनाब कि अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या फिर आप अपने चेहरे के मसाइल को खत्म करना चाहते हैं या फिर उन्हें गायब करना चाहते हैं तो आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को भी ये एहसास हो वाकई आप लोगों की खूबसूरती जो है वो कहाँ छुपी हुई थी. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक तैयार की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम. तो भाई इसे सारे लोग ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसे तैयार इस तरह किया गया है कि इसे ऑल स्किन टाइप वाले लोग लगा सकते हैं चाहे आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे. लड़के लड़कियां सब ही लगाएंगे. उनका अलावा अगर तुम यो सोचो पाया तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असा लगायूं तो बाबा कड़ो फायदो पवंदो तव्हांखे फायदो ही पवंदो तो माण्हू यो सोचींदा आहिनि त बाबा क्रीम जे अंदर केमिकल हूंदो आहे. त केमिकल अगर तव्हांखे थोरो डिस्ट्रेक्ट कंदो आहे तव्हां न वठी सघंदा आहियो न इस्तेमालु करे सघंदा आहियो त पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु करे ॾिसो. जंहिंजे इस्तेमाल खां पोइ तव्हांखे इहा चीज़ वाज़े ख़बर पइजी वेंदी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वाके कमाल जो प्रोडक्ट आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन आहे जेका तव्हांखे ॿ रातिनि में सफ़ा वी आई पी रिज़ल्ट ॾींदी. ऐं तव्हांजे चेहरे जा निशान हुजनि, एक्नी हुजनि, दाणा हुजनि या फिर उन खां अलावा अखियुनि जा हल्का जेके आहिनि काफ़ी वधी विया आहिनि, रिंकल्स अची विया आहिनि, इहे सभु चीज़ूं दूरि थी वेंदी. तव्हांखे मिलंदी बाबा सफ़ा वी आई पी साफ़ शफ़ाफ़ स्किन. ऐं मर्द मायूं सभी हणी सघनि था, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे सो टेंशन जी का बि ॻाल्हि कोन्हे का. उन खां अलावा साथ में तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे. तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज कंदो, क्लीन कंदो, उन खां अलावा तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट बि रखंदो. सो तव्हां ट्राई करे ॾिसो, सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी वारा प्रोडक्ट आहिनि. उन खां अलावा तव्हांजे एरिया में नथा मिलनि त उन जे लाइ तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायां थी बाबा साईं नंबर ते राबितो लाज़मी कंदा कयो जे तव्हांजे एरिया में अवेलेबल थियनि ऐं तव्हांखे वठण में आसानी थिए. ओके जी सभु समुझां थी बाबा, सभु समुझां थी. तव्हां कंजूस थी विया आहियो अॼुकल्ह. ईअं न कयो बाबा, कंजूसी एतिरी न कयो. ऐं कंजूसी ख़ासि करे उहे माण्हू त न कनि जेके बाबा पंहिंजे स्किन जी वजह सां थोरो परेशान आहे. थोरो पाण ते ख़र्चु करणु सिखो ऐं ख़र्चु कयो त ख़र्चु जेको आहे न उहो सजायो वञे, अजायो न वञे. सम्झो था, मां सोचां थी त मां सही चयो या न. बिल्कुलु सही चयो.

हाँ जी वनी तो पोए जी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो जांस या उन खां अलावा अगर तां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोए तव्हांखे डायल करणो आहे 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 या वरी बियो नंबर आहे 03-273-4309 नंबर डायल कर तव्हांजे एरिया में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं वाइट एज जा प्रोडक्ट अवेलेबल थी वञनि समझो था गानो ॿुधो हाणे थोरो न त चवंदा सिदरा चुप कर ओके

अच्छा एमडी सदाम हमारे साथ है, आपको वेलकम कहा जाता है। लिखते हैं आरजे, मेरी जिंदगी का हसी लम्हा वो है जब स्कूल में मस्ती करते थे। योर टॉपिक आंसर ओके, क्या बात है, जबरदस्त। सिंधी रेडियो लिसनर क्लब नवाबशाह से हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका कमेंट ये ऊपर भाग गया, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहा जाता है। और रिजवान अली हमारे साथ कहते हैं हाय बहन आप कैसी हैं, रिजवान अली शो आपका वीआईपी है, थैंक यू। चाचा खालिद कहते हैं शहीद कमाल जिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये ना मत आना मैं न्यूज। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ है, विलेर सकरंड आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है, थैंक यू आप हमारे साथ साथ है। और है जी लाला एजाज भुट्टो, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और एम डी सलीम कहते हैं कि आरजे मैं आपका शो कभी कभी ज्वाइन करूंगा, इसलिए आप नाराज मत होना। नहीं नहीं जी, नाराज क्यों होंगे भला आपसे। और नखा अलावा नजीबुल्ला ब्रोही वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, ही एकड़ो ट्रैक लिस्ट में लगायो आ जेको मिली करी एंजॉय के नासे मैसेज जल्दी पड़ी वठा तवाजा कुछ जी रेजी न वजन।

वाह साई वाह, वाह साई वाह, यह गाल वाकई मुनासिब ना है। ओके जी, और यहाँ पर अली मुर्तजा कहते हैं, खुशियाँ कैसे मिलती हैं हमसे पूछती हो, खुद भी तो बताओ। खुशियाँ कैसे मिलती हैं ये खुद में ही नहीं जानती। खुशियाँ शायद छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई होती हैं, किसी की थोड़ी सी मदद कर लें, किसी का मसला हल कर लें, इस तरह की अगर काम जिंदगी में करना शुरू कर देंगे तो शायद खुशियाँ मिल सकती है। मुझे ये लगता है वाकई अगर हमारी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फेस करनी पड़ जाती है, लेकिन अगर हम दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करते हैं, लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारी जिंदगी ऐसे सही होना शुरू हो जाएगी। हमें ये लगेगा कि वाकई भाई चाहे कुछ भी चलता रहे जिंदगी में, लेकिन हाँ सुकून तो है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ भी हो लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं तो समझ लें कुछ भी नहीं, और अगर बहुत सारे मसले हैं और आपके पास सुकून है तो समझ लेंगे बस सब कुछ है। बस जी, अब मकसद पूरा हो गया।

सही माण्हू ना शुक्रा कॾहिं बि ज़िंदगीअ में ख़ुशि न थींदा. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमालु कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे ख़ूबसूरती खे सफ़ा वी आई पी बणाए छॾींदी. अखलाक भाई कहते कि सदरा माण्हू वफ़ादार अथई पर छा कयूं, गिला खोर बि घणा, छा कयूं. बस इग्नोर कयूं, ॿियो वरी छा कंदासीं. नजीबुल्ला कहते हैं भाजी सदरा मेरी छोटी बहन और छोटा भाई भी आपका शो सुन रहे हैं. थैंक यू जी, सबको वेलकम कहा जाता है. और करीम बख्श शर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद रमजान हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम. भाजी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसे. राशिद खोड़ो हमारे साथी, आपको भी जी वेलकम कहा जाता है. दर्दे दिल कहती है कि टॉपिक जब हम सब कजिन बहने साथ मिलकर बैठकर बातें करते थे और आपका शो सुनते थे, वक्त का पता भी नहीं चलता था. अब सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए, एक साल बाद मिलते हैं, अब वक्त वैसा नहीं रहा. बिल्कुल सही कह रही है. एक लाख भाई कहते हैं सिदरा छा गाल कजे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी, वाकई बाबा दम अथसि, ईअं न ॾिस मता न मञोसि.

चार शोने बिल्कुल समझ गए बाबा। और ये हमारे साथ इरम कहती हैं, दिलबर आप ही आजकल बच्चे बहुत शरारती हो गए, मेरी भी भतीजियां शरारती हैं। एक मर्तबा मेरी भतीजियों ने इसके बाद जो ना आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो गया है, आजकल पता नहीं ये मसला क्यों बढ़ता जा रहा है। और ये हमारे साथ है सिद्रा मुस्कान बाजी, आपकी बातें बहुत प्यारी हैं। मैं बुशरा हलीपोटो उमरकोट विलेज मियां दोस्त हली, प्लीज प्ले ममताज मोलाई, ममताज मोलाई जो गानों संबुदी चलियो से सुनी। डेडिकेट कहती हलीमा लाल खातू, सलमा शाहिदा फरीदा बख्तावर एंड सीमा हलीपोटो जी नाले, थैंक यू सो मच सब परिन के तवाजो मुहबतू आइन तां प्रोग्राम बुधो पे बाबा आइ तवा दियो हाल हवाल रेस स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो को या व्हाइट हेज़ प्रोडक्ट लगायो पया। अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ है सिस्टर सिद्रा जी, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वीआईपी प्रोग्राम, ओ हो नाइस ऑफ यू सिस्टर। फायज़ अली का नया सॉन्ग लगाइएगा फरमाइश अली रजा भंड, अली रजा भा तवां जला फायज़ जो गानो हलायो सी यकीन तवां के पसंद आयो हो। अच्छा अच्छा खालिद कहते हैं गाना, अच्छा लिंक त मतलब लिंक जो सवाल ही ना चाचा नेटवर्क कोने तो काडा तां जे लिंक हलंदी। और वरियाम अली जतो ही हमारे साथ बेस्ट यू एंड लवली ऑल सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच वरियाम। सोने के यहां पे जब अच्छा और अब बताएं आप अब क्या हो रहा है कितने साल हो गए

अच्छा मुजाहिद बहुत ज्यादा लिखते हैं, वडेरी टॉपिक जिंदगी का हसीन लम्हा वो था जब हम छोटे थे। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। और उसके अलावा कहते हैं उन्हें पेड़ शायद कदम ठीक थींदो ही ना, बस उनके छड़े जो पानी खा लेते बाबा। अच्छा रमजान भात अवाज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पाया, मोहम्मद जमान भात अवाज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पाया। और हैं जी हमारे साथ अली मुर्तजा, कहते हैं परमिशन वठी अच ऐं सिडो का क्रीमू खयूं अच जा। हां बिल्कुल मुड़े मोकलियोस त मां ज्यास क्रीमू। अच्छा ही चादा चो ओए कंजूस न चो, असा चो चाहियूं त ट्रक डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो वठी मुंह ते लगाए सकूं था। त पो वठो नी के जलो तव। अच्छा चनेसर थेबू हमारे साथ हैं भाई, वालेकुम अस्सलाम। जवार मोहम्मद बच्चल चंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम, तहां से सगड़ मौजूद है। अच्छा अशरफ भी हमारे साथ हैं, कहते जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना। हेलो जिन अजा ताई कोन कयो है। रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू स्वीटी। एसन कहते हैं ये ना वणे वणी गानो

0: अगर आप डेज स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुशियाँ मिल ही जाएंगी। उदास लड़की भी आ चुकी है, लास्ट में आपको वेलकम करते हैं। एम कहते हैं कि यप आई एम सोशलिस्ट। आप खुद के लिए कितना भी बड़ा करें, लेकिन वो खुशी जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए, वो खुशी जो बाबा एकड़ो लेवल ही अलग हों दो आए। सही था जो वरी इहो आहे त कंहिंजी हेल्प करे वरी विसारे छॾींदा कयो, ऐं इहा उमेद त हरगिज़ न रखंदा कयो त जंहिंसां तव्हां सुठो कयो आहे, जंहिंजी बुरे वक़्त में तव्हां मदद कई आहे, त उहो इंसान बि तव्हां सां सुठो कंदो। इहा शइ विसारे छॾींदा कयो छो त ईअं न आहे थींदो। अॼुकल्ह जे दौर में मूं इहा पर्सनली इहा शइ ॾिठी आहे त जंहिंसां तव्हां जेतिरो सुठो हलंदा, जंहिंजे लाइ तव्हां सभु कुझु कंदा, सभु कुझु कंदा, ऐं तव्हांखे इहो हूंदो त बाबा अॻिते हली किथे न किथे मुंहिंजे हिन एफट्स जो मूंखे हिकिड़ो रिवॉर्ड मिलंदो। शायदि थी सघे थो मूंखे शबशी मिले, पर ईअं न हूंदो, ऐं उल्टो उहो ई माण्हू तव्हांजे लाइ एॾो मतिलबु बरो बुरो भलो ॻाल्हाईंदो त तव्हां सोचींदा त बाबा ई मूं छा कयो। पर तव्हां इन चीज़ जो सफ़ा ख़्यालु न रखंदा कयो त अगरि तव्हां कंहिंसां कुझु सुठो कयो था त उनजो तव्हांखे बदिलो मिलंदो। बदिलो तव्हां सिर्फ़ु अलाह खां वठो जेको ॾियण वारो आहे, जेको बेस्ट बदिलो तव्हांखे ॾींदो, पर माण्हुनि मां उमेद न रखो। बसि हा, तव्हां पाण सुठा कम कयो, माण्हुनि जी मदद कयो, बसि मदद करी वरी पोइ विसारे छॾियो। उधार पैसा न ॾियो कंहिंखे, बाक़ी ॿिया हल्का फुल्का जेके कम हूंदा आहिनि। उधार ॾियण वारो सिस्टम बि ॾाढो ॾुखियो आहे बाबा। इन ते बि ख़ैर सां इलाही चीज़ूं इलाही ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं, पर असां वटि टाइम वञी सफ़ा ख़तम थी वियो आहे। सो टाइम जी किल्लत खे ॾिसी करे तव्हांखां इजाज़त वठंदासीं। वरी इनशाला तव्हां सां मुंहिंजी मुलाक़ात थिए पई बाबा 5 बजे वारे प्रोग्राम में। सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा, ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था। ऐं वेंदे वेंदे चवंदी वेंदमि त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी वाइट एज जा प्रोडक्ट हुजनि, हिननि खे तव्हां लाज़मी लॻाए ॾिसो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी खूबसूरती खे वधाईंदी, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजी खूबसूरती जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि। सो तव्हां चाहियो था त तव्हांजी स्किन जेका हमेशह खूबसूरत रहे, ग्लो हुजे, ऐं तव्हां महकंदा वधो त तव्हां
1: हर अच्छे स्टोर से नाम ले
2: ईरान जे बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी सलाहियत खे कमज़ोर करणु आहे। पेंटागन पारां ईरान ख़िलाफ़ जारी जंग में 100 फ़ौजनि जे ज़ख़्मी थियण जी बि तस्दीक। इराक जे शहर अरबैल में अल हरीर एयरबेस वेझो बारूद सां भरियल ईरानी ड्रोन किरायो वियो।
3: अमेरिकी हमलनि जे

से हमले में केतिरा ई अमेरिकी फौजी मारिजी विया आहिनि। बहरीन में अमेरिकी कंपनी एमेज़ॉन जो डेटा सेंटर भी तबाह कयो वियो आहे। हिते में अमेरिका लाइ का बि जॻह नाहे। अमेरिकी फौज वधीक

आपदा हर मुझे आखिरी रस्ते तक गुजरने की कोशिश दौरान बिन तेल बरदार जहाजन के धमाकन बाद बाहर लगी वही। बतानवी मेरीटाइम एजेंसी जो चवण है ओमान में जो एक ऑयल टैंकर से हमलो थो है, जहाज जो अमलो महफूज है, लाइफ बोट्स में सवार थी निकली वो।

0: तेल जखीरन ते पवन लगा अमेरिका में तेल जखीर घट जी 43 डीं जा बचा बैंक ऑफ अमेरिका जी रिपोर्ट मौजूद पेट्रोलियम जखीरा 4 ढाकन जी घट सतह ते पहुंची वया हन अमेरिका वट हाने रुगो 43 डीं जा जखीरा बचा हन जेके 10 ढाकन जी घट सतह है।
1: जलालपुर कैनाल ते असांजा एतराज बरकरार आहिन। गडल मुफादन वाली काउंसिल में कैनाल खिलाफ वेल आहियूं। सिंधु के सदाई हिस्से का घट पानी मिलो आहे। टेलीमेट्री सिस्टम ऐं इरसा जे तरीके ते केतरा ही भेरा एतराज वारा आहिन। कराची में मीडिया से गालाईंदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त पाणीअ बाबति माहिरनि ते ॿधल टास्क फोर्स जोड़ी आहे। आबी माहिरनि जो जाइज़ो वठी हिकमत बि जोड़ी वेंदी। गुम थियल ॿारनि जे वालदेन जी तकलीफ़ जो अहसास आहे। घरो वज़ीर मामले खे ॾिसी रहियो आहे। दरख़्वास्त आहे त कानून हथ में न खयो वञे। सिंधु हुकूमत पारां ख़ातिरी कराए रहियो आहियां त ॿारनि खे बाजियाब कराइण जी भरपूर कोशिश कई वेंदी।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नए चूंडियल वॾे वज़ीर अमजद हुसैन जी मुलाक़ात। गिलगित बल्तिस्तान जे वरितो वियो। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर खे मसलनि जे हल में मदद जी ख़ातिरी कराई। मुलाक़ात दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल ऐं ॿिया बि मौजूदु हुया।
1: पाकिस्तान जे दौरे ते मौजूद ईरानी घरो वज़ीर सिकंदर मोमनी पारां पाकिस्तानी मोन्यूमेंट जो दौरो। मुमलिकत वज़ीर तलाल चौधरी सां गॾु सिकंदर मोमनी पाकिस्तान मोन्यूमेंट जो दौरो करे शहीदनि जी यादगार ते गुल बि रखिया। ईरानी घरो वज़ीर जी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सां बि मुलाक़ात जो इम्कान।
0: सेनेट जे पेट्रोलियम बाबति स्टैंडिंग कमेटीअ जो इजलास। सिंध खे गैस न मिलण ते ख़दशा ज़ाहिर। सेनेटर सैफला धारे जो सिंध में गैस जी खोट ऐं मक़ामी माण्हुनि खे सहूलियतूं।

0: ॿ सौ टे में जारी थियल वज़ीर आज़म जे हुकुम मूजिबि गैस पैदा कंदड़ इलाइक़नि जे ॻोठनि खे तरजीह बुनियादनि ते गैस फराहम करणी हुई। पेट्रोलियम कमेटी मामले जी जांच लाइ सब कमेटी क़ाइम करे छॾी। पेट्रोलियम वज़ारत ओबरा ऐं एस एस जी ए सी जे आला अमलदारनि खे हिकु हफ़्ते अंदरि तफ़सीली रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत।
1: सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में फराग खाते जे रिटायर्ड मुलाज़िम जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी फैसले ते अमल न थियण ते अदालत पारां कावड़ जो इज़हार। फराग खाते जे आफिसर्स खे ॿिनि कलाकनि जे लाइ अदालती तहवील में विहारे छॾियो। डायरेक्टर फूड, डेप्यूटी डायरेक्टर डीएफसी करपुर ऐं ट्रेज़री जा आफिसर्स तलब। ॿिनि हफ़्तनि अंदरि मराहतूं ॾेई जवाब जमा कराइण जो हुकुम।
0: उमरकोट शहर ऐं भरपासे उरड़ीअ जे मर्ज़ ते ज़ाब्तो न आयो। ॿ ॿारड़ा फोत ॻोठ होतू कोलीअ में छह वरियनि जी सुनीता धीअ रूपो ऐं टे सालनि जो गुलाब पुट रूपो फोत थी विया। उरड़ी वगे ॿिनि ॿारनि जी फोतगी बाद इलाइक़े वासी में गणतीअ जी लहर छायल आहे। हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जी घुर।
1: ज़ुल्म में मूसा अलाहाबाद शाख जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ धरणो। अॻवान चयो त शाख में पाणी कोन्हे, सारियालो ॿिज सड़ी रहियो आहे, पाणी फराहम कयो वञे। सन में जो शाहवेस कैनाल में पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो पीअण जे पाणीअ जा थांव खणी एहतजाज। मुज़ाहिरीन जो शाहवेस कैनाल में पाणी छोड़ करण जो मुतालबो। कैप भरिसां देह लांघा जे आबादगारनि जो ज़रई पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो। पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।

0: झोलवे जो माशूक मोरी स्टाफ वट गोठाणे जो लाश रखी सुञाणप कायम जलालाणी वासी पुनू जलालाणी जे नाले सां थी वारसन वजू पुनू गुजरियल ॾींहुं कम सांगे घरां निकितो हो अॼु संदसि लाश मिलियो आहे संदसि मौत कीअं थियो का ख़बर नाहे जांच कई वञे
1: मठियाई में खोसा बिरादरी जो निंगरी सोनिया समेत अगवा थियल ॿियनि ॿारनि जी बाज़ाबी जे लाइ एहतजाज सोनिया समेत अगवा थियल ॿार बाज़ार

0: में चयो आहे त पिंकी जो भाउ नासिर 26 फरवरी ते बरी थी चुको आहे। केस में पिंकी 2018 खां मफरूर हुई। जांच दौरान पिंकी मंशियात जो नेटवर्क हलाइण जो एतराफ़ कयो आहे।
1: कराची में NCHD के उस्ताद पारा मुतालबन की मंजता के लिए एहतजाज पक्ो करण जो मुतालबो। मुजाहन चयो तो 22 साल का पढ़ाए रहा हूं, हुकूमत पक्ो न किया है, फौरी तौर पक्ो कर बरातू दिन वन। हुकूमत NCHD उस्ताद जहा जायज मुतालबा तस्लीम न किया तो एहतजाज जो दायरो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: यार कुछ डीन का चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंदते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
3: सिर्फ चेल ही सूर लाए
4: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल किए कजे?
4: मुतासिर थे हंदते डीह में 2-3 भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर का आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: काले पानी का इलाज और ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आंखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक। इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस: सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेजर आँखों का अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। फोन नंबर 0303-261-7077।
1: सिंधड़ी आमों की सरजमीन,
2: सिंध का शहर खास,
1: मीरपुर खास,
3: मीरपुर खास FM 88 जो आवाज, जेको अवां जो पैगाम पहुंचाए हर हंद, जीए मीरपुर खास FM 88। केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे, पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो, जीए मीरपुर खास FM 88। वधीक राब्ते लाए मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 0333-3722-071।
1: मीरपुर खास की आवाज,
4: सिंध के माथे का झूमर,
1: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

खातून ने अपनी सालगिरह पर पसंदीदा रंग का इस्तेमाल करते हुए लॉटरी स्क्रैच की $1 million की इनामी रकम जीत गई। अमरीकी रियासत एली नवाज की खातून की सालगिरह का दिन उनके लिए खुशकिस्मत साबित हुआ। स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट का इंतखाब करने के लिए उन्होंने अपने पसंदीदा रंग का इस्तेमाल किया। $1,00,000 का खतीर इनाम जीतने में कामयाब रही। यादगार सालगिरह हो गई है इनकी। खातून ने लॉटरी अहलकारों को बताया वो साउथ हारेलियम एवेन्यू पर वाके BP स्टेशन पर अपनी सालगिरह के मौके पर गैस भरवाने के लिए रुकी थी। इस दौरान उन्होंने स्टोर के अंदर देखा 25 डायमंड क्रॉस वर्ड 10X का टिकट जामनी रंग का था, जो इनका पसंदीदा रंग था। खातून ने खुद को सालगिरह का तोहफा देने के लिए वहां मौजूद टिकट्स में से जामनी रंग का टिकट खरीदने का फैसला किया। उन्होंने बताया, जब मैं अपनी गाड़ी में बैठकर मैंने वो टिकट स्क्रैच किया, मुझे यकीन नहीं आया कि उसके इसमें $1 million की रकम जीत चुकी थी। खातून ने कहा, यह जीत हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाएगी। मैंने कभी सालों में भी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी इस तरह एक लम्हे में चेंज हो जाएगी। तो जो है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी कामयाबियां लोगों को मिलती रहती हैं। और जनाब, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, एज यूजुअल यहाँ पर मैं जाने वाली हूँ छोटे से तशहीरी वक्फे की जानिब, और इस ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड जीएफएम 88 नेटवर्क।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ओके जी, आपकी कॉल श्यामले प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: यास्मीन, वेलकम कहेंगे आपको, और क्या कहेंगे आप टॉपिक के हवाले से?
1: आपकी टॉपिक तो बहुत अच्छा है। जब मुझे किसी के ऊपर गुस्सा हो ना, मतलब
0: नहीं आप किसी पे गुस्सा ना हो, किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया है तो आपके दिमाग में क्या सोच आएगी फौरन?
1: बुरा सलूक किया है तो मैं सबसे पहले अपने मोबाइल में से उसका नंबर डिलीट कर देती हूँ। बात सबको ही बताए, और मतलब मेरे पास ना मेरे ही मतलब घर वालों के नंबर अब चेंज नहीं है, क्योंकि मैं बेशुमार बता चुकी हूँ ना, तो वो नंबर ही
0: यास्मीन मुझे ऐसी आ रही है, अब आपके तो माशाल्लाह काम ही निराले। अगर आपको उसी इंसान से दोबारा से कोई काम पड़ जाए साल दो के बाद, तो फिर क्या करोगी? तो नहीं होगा,
1: माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, फिर बताते हैं तो फिर वो और भी ज्यादा हंसते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने आपका नंबर काट दिया था, मुझे
0: क्या कहने, क्या कहने यास्मीन, बड़ा ही यूनिक स्टाइल है आपका ये।
1: आज पता है क्या शायरी सुनाइएगा? वो एक तो वो शायरी बारिश की बरसती बूंदों में,
0: ओके,
1: और एक वो कुछ लफ्ज अगर मुझे मिल जाए, ये वाली शायरी बहुत प्यारी लगती है आपसे लफ्ज सुनाई।
0: बारिश आने में अभी दरमियान में 4 दिन बाकी है यास्मीन, आप आज ही दावत दे रही हैं बारिश को, चले मैं जरूर सुनाऊंगी।
1: थोड़ी बहुत आई बारिश तो मुझे पसंद नहीं आती।
0: ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जैसे हमारी गलियों के रास्ते हो जाते हैं, गड़र उबल उबल के बाहर आ रहे होते हैं, तो फिर हम जो यही कहते हैं कि बंदा बरसात ही ना हो हमारे यहाँ, जबकि अदर एरियाज जो है नॉर्दर्न एरियाज में वहाँ पर बरसात होती है बड़ी लश और जबरदस्त होती है, थोड़ी देर और पता ही नहीं चलता पानी कहाँ गया बरसात वाला। एनीवे जनाब, हम दोबारा लौट आते हैं अपने स्टूडियो और लेते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर भाई कहाँ घूमे आप? चले अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? चले ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे सब सुनने वालों को?
2: सुनने वालों को सलाम ताहिर भाई की जाने से, और
0: जी
2: जिनको नहीं है मैं उनको ये कहूँगा कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पर परिंदे हैं, जानवर हैं, चींटियाँ वगैरह हैं, उनके लिए कुछ अपने
0: इंशाल्लाह आसानी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर भाई, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जनाब गर्मी का भी मौसम है, तो दाना पानी जो है अगर आप छत की मुंडेर पर रख देंगे, उससे जो है जो परिंदे हवाओं में जो रिस्क की तलाश में होंगे उनकी आसानी होगी, उनके लिए आसानी तकसीम करेंगे, आसानी डबल आसानी होकर आपको लौट के मिलेगी। और कोशिश किया करें कि घर में होता है अक्सर, मैंने नोट किया है कि रात की रोटी अगर कोई बच जाए तो उसे जो है फेंकना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है और ये चीज़ पर्सनली नोट की है, कचरे पर फेंक देते हैं शॉपर में डाल के। तो जनाब उसके अगर छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप अपने छत की मुंडेर पर रख लें, किसी दरख्त की जड़ पर डाल दें, तो जो परिंदे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उन्हें खाएंगे, तो इसके बहुत से बेनिफिट्स आपको होंगे। लेकिन आपकी कॉल्स भी लेते हैं साथ साथ हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: वेलकम कहेंगे अलीजा, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलीजा, क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
3: टॉपिक के हवाले से नहीं कहूँगी, तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर ये सोचती कभी कभार तो घर गुजर कर जाती है और कभी कभार बोल देती
0: है। अच्छा चलें ठीक है, और बताएं निदा ठीक है?
3: जी बिल्कुल सब ठीक है, और फैमिली हम शो सुन रहे
0: हैं। चलें बहुत शुक्रिया आपका लीजा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।
3: और शो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और आपकी आवाज की क्या ही बात करें।
0: कोई भी बात नहीं करें लीजा, मैं अल्लाह हाफिज कहती हूँ, मुझे हंसी आती है जब कोई भी कहता है आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे हंसी आती है बहुत ज्यादा।
3: नहीं हंसी क्यों आती है, आपकी आवाज है इतनी प्यारी है।
0: प्लीज ओके अलीजा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
3: आपको पिला नहीं हूँ, ठीक है ना?
0: आज मेरी फीमेल लिसनर्स जितनी भी है मुझे हंसा रही हैं, पहले यास्मीन अब अलीजा। چلیں جی نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادا ریڈیو بند کر دیں پلیز. جی اب بتائیے کون بات کر رہا ہے. بھلی کر چوں تھا ادا تماں کے کیڑا حال ہے تماں جا. الحمدللہ ادا سب خیر. ٹاپک بابت چھا رہا ہے تماں جی.
4: باجی تے راہ ہی آیا تھا صاحب دوسو نہیں جا پر کو صبر کندا.
0: جی چلیں ٹھیک ہے دوستوں کو یاد کر.
4: ہمارے پاس ہاں ہمارے پاس بھائی ہے ظہیر منجا تو میرا بھاجا آیا منجا تو بھائی جو بھی سن رہا ہے وفا عبد بھائی تے جتے پارا سب سے تک سلام
0: سب نہیں پارا. وعلیکم السلام ادا مہربانی تماں جی تماں سا کے جوائن کیو. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا اور جناب میرے خیال سے آپ انجوائے کریں یہ گیت کیونکہ اس گیت کے بعد جائیں گے ہم بریک کی جانب. بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیون جی ایف ایم ایٹی. It's network.

0: It's 4 p.m. This line check is gone.
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez Aaram.

अमेरिकी फौज जा ॾहीं राति में ईरान ते हमला। ईरान जे फौजी कमांड मर्कज़ मिज़ाइल ऐं ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि खे निशानो बणायो। असफहान, चाबहार, कोनार, कशम, सिरक ऐं बंदर अब्बास ते अमेरिकी फौज जी बमबारी। सेनका मूजिबि हमलनि जो मक़सदु आबिनाए हरमुज़ में ईरान जे बहरी जहाज़नि ते हमलनि जी सलाहियत खे कमज़ोर करणु आहे। पेंटागन पारां ईरान ख़िलाफ़ जारी जंग में 100 फौजनि जे ज़ख़्मी थियण जी बि तस्दीक। इराक जे शहर अरबैल में अल हरीर एयरबेस वेझो बारूद सां भरियल ईरानी ड्रोन किरायो वियो। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरानी फ़ौज जा कुवैत, बहरैन ऐं उर्दन में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ते हमला। अमेरिकी रेडार, दिफ़ाई निज़ाम ऐं F-15 जहाज़ तबाह करण जी दावा। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमेरिकी फ़ौज जे कॉम्प्लेक्स जे हमले में केतिरा ई अमेरिकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। बहरैन में अमेरिकी कंपनी अमेज़ॉन जो डेटा सेंटर बि तबाह कयो वियो आहे। हिते में अमेरिका जे लाइ का बि जॻहि न आहे। अमेरिकी फ़ौज वधीक नुक़साननि खां बचणु चाहे थी त किथे मां निकिरी वञे। आबनाए हरमुज़ जे ॾाखणे रस्ते तां गुज़रण जी कोशिश दौरान ॿिनि तेल बरदार जहाज़नि खे धमाकनि बाद बाहि लॻी वई। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसीअ जो चवणु आहे त ओमान वेझो हिकु ऑयल टैंकर ते हमिलो थियो आहे। जहाज़ जो हमिलो महफ़ूज़ आहे, जेको लाइफ बोट्स में सवार थी निकिरी वियो। जलालपुर केनाल ते असांजा एतिराज़ बरक़रार आहिनि। गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल में केनाल ख़िलाफ़ वियल आहियूं। सिंध खे सदाईं हिसे खां घटि पाणी मिलियो आहे। टेलीमेट्री सिस्टम ऐं इरसा जे तरीक़े ते केतिरा ई फेरा एतिराज़ वारा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर बरादरी शाह चयो आहे त पाणीअ बाबति माहिरनि ते ॿधल टास्क फोर्स जोड़ियो आहे। आबी मुआहिदनि जो जाइज़ो वठी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी। गुम थियल ॿारनि जे वालदेन जी तकलीफ़ जो अहसासु आहे। घरू वज़ीर मामले खे ॾिसी रहियो आहे। दरख़्वास्त आहे त कानून हथ में न खयो वञे। सिंध हुकूमत पारां ख़ातिरी कराए रहियो आहियां त ॿारनि खे बाज़ियाब कराइण जी भरपूर कोशिश कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नए चूंडियल वॾे वज़ीर अमजद हुसैन जी मुलाक़ात। गिलगित बल्तिस्तान जे मसइलनि जो जाइज़ो वरितो वियो। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर खे मसइलनि जे हल में मदद जी ख़ातिरी कराई। मुलाक़ात दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ। पाकिस्तान जे दौरे ते मौजूदु ईरानी घरू वज़ीर सिकंदर मोमनी पारां पाकिस्तानी मॉन्यूमेंट जो दौरो। ममलिकती वज़ीर तलाल चौधरी सां गॾु सिकंदर मोमनी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जो दौरो करे शहीदनि जी यादगार ते गुल बि रखिया। ईरानी घरू वज़ीर जी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सां बि मुलाक़ात जो इम्कान। सेनेट जी पेट्रोलियम बाबति स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास। सिंध खे गैस न मिलण ते ख़दशा ज़ाहिर। सेनेटर सैफुल्ला धारे जो सिंध में गैस जी खोट ऐं मक़ामी माण्हुनि खे सहूलियतूं न ॾियण ते गणतीअ जो इज़हार कंदे चयो त सिंध मुल्क जी 60-65% गैस जूं ज़रूरतूं पूरियूं करे थी। जिन इलाइक़नि मां गैस निकिरे थी उते बि का सहूलियत न आहे। 2003 में जारी थियल वज़ीर आज़म जे हुकुम मूजिबि गैस पैदा कंदड़ इलाइक़नि जे ॻोठनि खे तरजीही बुनियादनि ते गैस फराहम करणी हुई। पेट्रोलियम कमेटी मामले जी जांच जे लाइ सब कमेटी क़ाइमु करे छॾी। पेट्रोलियम वारी वज़ारत ओगरा ऐं SSGC जे आला अमलदारनि खे हिकु हफ़्ते अंदरि तफ़सीली रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत।

0: एम के एम अगवाणन ख़िलाफ़ मुल्क मुखालिफ़ तकरीर में सहूलतकारी वारो केस बीहर खुली वो हमीद पाशा मोहम्मद तहसीन वसीम ए आफाक आलम बिन ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले जांच ऑफिसर अदालत खे ॿुधायो त जवाबदारनि खां 2016 में ब्रिगेड थाणे ते केस दाख़िल थियो हो जवाबदारनि जे ॿियनि साथियुनि खे बि गिरफ़्तार करणो आहे जवाबदारनि जो रिमांड ॾिनो वञे केस में फारूक सतार रऊफ़ सिद्दीकी वसीम अख़्तर 2022 में बरी थी चुका आहिनि उमरकोट शहर ऐं भर पासे उड़ीअ जे मर्ज़ ते ज़ाब्तो न आयो ॿ ॿार फोत ॻोठ पोतू कोली में 6 महीननि जी सुनीता धीअ रूपो ऐं 3 सालनि जो गुलाब पुटु रूपो फोत थी विया उड़ीअ विखे ॿिनि ॿारनि जी फोतगीअ बाद इलाइक़े वासियुनि में गणतीअ जी लहर छायल हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जी घुर थुल में मूसा अलाहाबाद शाख जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ धरणो अॻवाननि चयो त शाख में पाणी कोन्हे सारियालो ॿिज सड़ी रहियो आहे पाणी फराहम कयो वञे सन वेझो शाह अवेस कैनाल में पाणी खोट ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो पीअण जे पाणीअ जा थांव खणी एहतजाज मुज़ाहिरनि जो शाह अवेस कैनाल में पाणी छोड़ करण जो मुतालबो कैरब भसां दे लांगा जे आबादगारनि जो ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ प्रेस क्लब वॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो पुछड़े ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो झोल वेझो माशूपोरी स्टॉप वटां ॻोठाणे जो लाश हथ लाश जी सुञाणप ॻोठ क़ाइम जलालाणी वासी पुनू जलालाणी जे नाले सां थी वारसनि वजो पुनू गुज़िरियल ॾींहुं कम सां घरां निकितो हो अॼु संदसि लाश मिलियो आहे संदसि मौत कीअं थियो का ख़बर न आहे जांच कई पई वञे मचारी में कोठड़ीअ मां महीनो अॻु मुबैना तौरु अॻवा थियल 5 महीननि जी सोनिया खोसो जी बाज़ियाबी जे लाइ एहतजाज सोनिया खोसो जे वारसनि प्रेस क्लब वारो एहतजाज कयो लाड़काणो में बि खोसा बिरादरी जो निगरी सोनिया समेत अॻवा थियल ॿियनि ॿारनि जी बाज़ियाबी जे लाइ एहतजाज सोनिया समेत अॻवा थियल ॿार बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए

गरीब के बाद गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर घूमने फिरने ना दें। बहुत से बच्चे जो है गर्मियों में लेट नाइट तक खेल रहे होते हैं, घर से बाहर भी गली में खेल रहे होते हैं, तो इस जो है चीज़ पे आपने जो है फिलहाल बरसात के मौसम में एहतियात करनी है। एहतियात बेहतर होती है बाद के पछतावे से। और यहाँ पर आ गई है जनाब मैडम मलका तरन्नुम नूर जहां। बहुत प्यारा गीत है, बेहतरीन गीत है, और आवाज़ तो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका लफ्ज़ों में तारुफ और तारीफ करवाना ऐसा ही है जैसे सूरज को चराग दिखाना। तो आप एंजॉय कीजिए प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

0: शहर GFM 88 नेटवर्क।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: शहर GFM 88 नेटवर्क से फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सुनी।

नफरत थी तो प्यार क्यों किया, देना था जहर तो प्यार क्यों किया, देकर जहर बोले तुम्हें पीना होगा, जब पी लिया जहर तो बोले तुम्हें मेरी कसम जीना होगा। मिसेस तौकीर मीरपुर खास से वेलकम कहेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, पोइट्री भेजिए आपने गुट आलम खान जरवार से। मोहम्मद अजीज जरवार कहते हैं कि जो करेगा वही भरेगा, दुआ है रब पाक आपको खुश रखे, आमीन। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आदम फाइन, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताइए, बल्कि अब आप क्या बताने वाले, अब तो इजाज़त लेनी है।

उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था, वो जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना, तनाजात का कुछ हल निकल भी सकता था, अनाने हाथ उठाने नहीं दिए वरना, मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था, तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा मोहसिन, तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा मोहसिन, ये एक बात के रास्ता बदल भी सकता था।

बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो, एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर सफेद एहसास हुआ, वो लम्स तुम्हारे जैसा था। तन्हा में चला फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, मैं समझा तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, ना बाकी रही आहट भी, मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था। बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था, अंदाज तुम्हारे जैसा था।

0: जो ख्याल थे ना कयास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। मेरी जिंदगी की जो आस थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग हैं मेरे हम सफर। मेरी मुझे मेरी तरह जो रास थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। मुझे लम्हा भर की रफाकतों के अजाब और सताएंगे। मेरी उम्र भर की जो प्यास थी, वही लोग हमसे बिछड़ गए। ये ख्याल सारे हैं आरजी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। कल आरजू की जो बात थी, वही लोग हमसे बिछड़ गए। जिन्हें कर जबाना कबूल में वो शरीक राह सफर हुए। जिंदगी की जो आस थे, वही लोग हमसे बिछड़ गए। वही लोग हमसे बिछड़ गए। ये झूठी कहानियां मुझे मत सुनाओ के ये झूठी कहानियां मुझे मत सुनाओ के माली मर जाए और बाग ठीक रहे। ये झूठी कहानियां मुझे मत सुनाओ कि माली मर जाए और बाग ठीक रहे। ये कैसे मुमकिन है राह मोहब्बत में महबूब छोड़ जाए और दिमाग ठीक रहे। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों के कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो के दिखा दे ये जरूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। हसासियत इस कदर बढ़ गई हर सानहे के बाद, हसासियत इस कदर बढ़ गई हर सानहे के बाद। हम इसके लिए भी रोए जिसे जानते न थे।
1: रात ढले तो तेरा जिक्र आए दिल के।
0: चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग। इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। हाँ जनाब, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम।

अच्छा जी अनाबिया, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन आपका आंसर राइट नहीं था, बहुत शुक्रिया चंदा, थैंक यू। जब मैसर थे मोहब्बत के सहारे कुछ दिन, जब मैसर थे मोहब्बत के सहारे कुछ दिन, हाँ बड़े ऐश में गुजारे थे हमारे कुछ दिन। सच कहा इश्क में नुकसान दोनों का हुआ, सच कहा इश्क में नुकसान दोनों का हुआ, मेरी एक उम्र गई और तुम्हारे कुछ।

It's 5 p.m.

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: निजी फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से मुलाकात जो इम्कान सिकंदर मबनी शहदाए पाकिस्तान यादगार जो दौरों करे गुल भी रखा।

अमरीकी हमलन जे जवाब में ईरानी फौज कुवैत बहरेन उर्दन में अमरीकी फौजन से हमला अमरीकी रडार दिफाई निज़ाम F-15 जहाज दबा कर दावा पासार इनकलाब है तो उर्दन में अमरीकी फौज के कॉम्प्लेक्स से हमले में केतरा ही अमरीकी फौजी मार बहरेन में अमरीकी कंपनी एमेजोन जो डेटा सेंटर भी खिते में अमरीका लाए का भी जगह ना है अमरीकी फौज नुकसान का बचण चाहे थी तो खिते में निकरी वने अबना हुरमस के दखणी रस्ते ता गुजरण की कोशिश दौरान बिन तेल भरदार जहाजन के धमाकन बाद बाह लगी वही तर बरतानवी मेरी टाइम एजेंसी जो चवण है तो अमान वेझो एक ऑयल टैंकर से हमलो थियो है जहाज जो हमलो महफूज है लाइफ बोट्स में सवार थी निकरी वो जलालपुर केनाल के असा एतराज बरकरार हैं गडियल मफादन वाली काउंसिल में केनाल खिलाफ वेल आयूं सिद्ध के सदाई हिस्से का घट पानी मिलो है टेलीमेंट्री सिस्टम इरसा के तरीके से केतरा ही भेरा एतराज पारे हैं कराची में मीडिया से गलते वे वजीर मुआदन इशा है तो पानी बाबत माहिरन से बदल टास्क फोर्स जोड़ो है आबी माहिरन जो जायजो वी हिकमत अमली जोड़ी वेंदी गुम थियल बार वालदेन की तकलीफ जो अहसास है घरू वजीर मामले के ऐसी रो है दरख्वास्त है तो कानून हथ में न वे सिंध हुकूमत पारा खातरी कराए रो आया तो बारन के बाजाब करने की भरपूर कोशिश कई वेंदी

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नए चूंडियल वॾे वज़ीर अमजद हुसैन जी मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान जे मसलनि जो जाइज़ो वरितो वियो। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर कंहिं मसलनि जे हल में मदद जी ख़ातिरी कराई। मुलाक़ात दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म साकटार, वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ। सेनेट जी पेट्रोलियम बाबति स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास। सिंध खे गैस त मिलण ते ख़दशा ज़ाहिर। सेनेटर सैफुल्ला धारे जो सिंध में गैस जी खोट ऐं मुक़ामी माण्हुनि खे सहूलियतूं न ॾियण ते घटतीअ जो इज़हार कंदे चयो त सिंध मुल्क जी 60% खां 65% गैस जूं ज़रूरतूं पूरियूं करे थी। जिन इलाइक़नि मां गैस निकिरे थी उते बि का सहूलियत नाहे। 2003 में जारी थियल वज़ीर-ए-आज़म जे हुकुम मूजिबि गैस पैदा कंदड़ इलाइक़नि जे ॻोठनि खे तरजीह बुनियादनि ते गैस फराहम करणी हुई। पेट्रोलियम कमेटी मामले जी जांच लाइ सब कमेटी क़ाइम करे छॾी। पेट्रोलियम वज़ारत, ओगरा ऐं SSGC जे आला अमलदारनि खे 1 हफ़्ते अंदरि तफ़सीली रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। एमकेएम अॻवाणनि ख़िलाफ़ मुल्क मुख़ालिफ़ तकरीर में सहूलतकारी वारो केस ॿीहर खुली वियो। हमीद पाशा, मोहम्मद यसीन वसीम ऐं आफ़ाक आलम ॿिनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। जांच आफ़िसर अदालत खे ॿुधायो त जवाबदारनि खां 2016 में ब्रिगेड थाणे ते केस दाख़िल थियो हो। जवाबदारनि जे ॿियनि साथियुनि खे बि गिरफ़्तार करणो आहे। जवाबदारनि जो रिमांड ॾिनो वञे। केस में फारूक सत्तार, रऊ सिद्दीकी, वसीम अख़्तर 2022 में बरी थी चुका आहिनि। उमरकोट शहर ऐं भर पासे में उड़ीअ जे मर्ज़ ते ज़ाब्तो न आयो। बबाड़ा फोत ॻोठ फोतुकुली में 6 वरियनि जी सुनीता धी रूपू ऐं 3 सालनि जो गुलाब पुट रूपू फोत थी विया। उड़ी रिगे ॿिनि ॿारनि जी फोतकी बाद इलाइक़े वासियुनि में घटि जी लहर छायल। हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जी घुर।

0: मटियारी में कोटड़ी में महीनो अग मुबैना तो रखवा थियल पंज वरियन की सोनिया खोसो की बासियाबी ला एहतजाज सोनिया खोसो के वारिसन प्रेस क्लब आडो एहतजाज कियो लाड़काने में भी खोसा बिरादरी की निगरी सोनिया समेत अखवा थियल बेन बाड़ियन की बासियाबी ला एहतजाज सोनिया समेत अखवा थियल बार बासियाब करण जो मुतालबो कराची की अदालत में अनमोल उफ्रीन के खिलाफ पनिशियात केस की बुधड़ी पुलिस केस जो जिमनी चालान अदालत में जमा कराए छो चालान में है पिंकी जो भाव नासिर 26 फरवरी से बरी थी चुको है केस में पिंकी 2018 का मफरूर हुई जांच दौरान पिंकी मनिशियात जो नेटवर्क हलण जो एतराफ़ किया है कराची में NCHT के उस्ताद पारा मुतालबन की मशताल एहतजाज पक्ो करण जो मुतालबो मुजाहन चाहिए तो 22 साल का पढ़ाई रहा हूं हुकूमत पक्ो न फौरी तौर पक्ो कर मरातू डी वन हुकूमत NCHT उस्ताद जायज मुतालबा तस्लीम न कया तो एहतजाज जो दायरो बढ़ाया वो लाड़काने शहर से एमए खोड़ो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक हॉकी ग्राउंड के कब्जे की कोशिश खिलाफ रांदीगरन जो एहतजाज हॉकी बैडमिंटन बास्केट बॉल समेत बेन मुख्तलिफ रांदियन से वास्तो रखंदड़ सीनियर रांदीगरन ग्राउंड के कब्जे की कोशिश खिलाफ एहतजाज कियो रांदियन के मैदान के कब्जे का बचाने जो मुतालबो फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास खलील उलहया के नौ सरबराह चूंडे छो खलील उलहया अक्टूबर 2024 में इसराइली हमले में शहीद थियल यहिया अलसनवार की जाए ते जिम्मेवारियों संभाली हमास पारा जारी कल बयान मूजिब खलील उलहया तंजीम के अंदर थींदड़ चूंडन के बे मरहले में कामयाबी हासिल कई KTN न्यूज सतपारा एक वण सिंध अमर के नाव के उनवान से भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान 24 का 31 जुलाई 2026 ताई वण पोखण वाली मुहिम भरपूर नमूने से हलाई वेंदी मुहिम दौरान पेंजे घर घिटी पाड़े शहर पार्कन ए मुख्तलिफ हंधन ते पेंजे हिस्से जो बूटो पोखे सिंध अमर के तोहफो दई सके तो इन बूटे की सार संभाल जो वचन भी कयो वेंदो मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमन शागिर्दन पोरियतन उस्तादन समेत समूरन माहौल दोस्त धुरियन के वण पोखण वाली सदक जारी में भरपूर शिरकत की दावत
1: Facing enemies and threats that scared me far less than this one. Everything that they sacrificed will be for nothing if we do not stand together.

ऐं मार्वल एंटरटेनमेंट जी नई फिल्म अवेंजर डोम्स डे जो पहिरियों ट्रेलर जारी थींदे ई करोड़े माण्हुनि ॾिसी वरितो। फिल्म 18 डिसंबर ते समूरी दुनिया में रिलीज़ कई वेंदी।

0: सोलर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छॾी आहे। हलण वेहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
2: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जे नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ। ऐं ॿुध, जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
2: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
3: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। सुबुह की

शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: नकाब देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान के दौरे से मौजूद ईरानी घरू वजीर सिकंदर मोमनी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात खिते की सूरतहाल समेत बेतरफन लागापन से गाल वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा खिते में जारी चिकताण के खात्मे लाए मुफम्मती यादाश्तनामे से अमल दरामद करण से जोर भरियो ईरानी घरू वजीर सिकंदर मोमनी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात जो इम्कान सिकंदर मोमनी शहदाए पाकिस्तान यादगार जो दौरों कर गुल भी रख्या।

0: अमरीकी फौज जा रही रात भी ईरान ते हमला। ईरान की फौजी कमांड मरकज मिसाइल ड्रोन लॉन्चिंग हंधन के निशानों बढ़ाया। अस्फहान, चाबहार, कोनारक, कशम, सेरक ए बंदर अब्बास से अमरीकी फौजी बमबारी। सेट का मौजूद हमलन जो मकसद अपने हरमोस में ईरान की बहरी जहाजन से हमलन की सलाहियत के कमजोर करण है। पेंटागोन पारा ईरान खिलाफ जारी जंग में 100 फौजियों के जख्मी थे भी तस्दीक। इराक के शहर अरबेल में अल हुरेर एयरबेस पे जो बारूद से भरल ईरानी ड्रोन किराया हुआ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो है जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल सोना तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंद ते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए?
3: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
2: इस्तेमाल किए कजे?
3: मुतासिर थे हंद ते डी में बखा टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर का आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करे हो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 7:15 PM.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8 PM. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरानी फ़ौज जा कुवैत, बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते हमला, अमरीकी रेडार, दिफ़ाई निज़ाम ऐं F-15 जहाज़ तबाह करण जी दावा। पासदारान इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी फ़ौज जे कॉम्प्लेक्स ते हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। बहरीन में बि अमरीकी कंपनी एमेज़ॉन जो डेटा सेंटर बि तबाह कयो वियो। खिते में अमरीका लाइ का बि जॻह नाहे। अमरीकी फ़ौज वधीक नुक़साननि खां बचणु चाहे थी त खिते मां निकिरी वञे।
1: ईरान हथियारनि वारी जंग सां गॾु मुआशी जंग बि विढ़ी रहियो आहे। ॻाल्हियुनि में ईरान जूं कामयाबियूं ॾिसी अमरीका मुआहिदो टोड़ियो, मामलनि खे संभालींदो ॾिसी ट्रंप जंग शुरू कई। ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ताईं रसाई वधी आहे। सुप्रीम लीडर निजी गॾिजाणियुनि में अमन ते ज़ोर ॾींदो आहे।

जलालपुर कैनाल ते असांजा एतराज़ बरकरार आहिनि। गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल में बि वियल आहियूं। सिंध खे सदाई हिसे खां घटि पाणी मिलियो आहे। टेलीमेंट्री सिस्टम ऐं इरसा जे तरीक़े ते केतिरा ई भेरा एतराज़ वारिया आहिनि। कराचीअ में ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो चवणु हो त पाणी बाबति टास्क फोर्स आबी मुआदनि जो जाइज़ो वठी हिकमत अमली जोड़ींदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी भान सईदाबाद बि आमन। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त प्रिया समेत गुम थियल ॿारनि वारे मामले खे घरू वज़ीर पाण ॾिसी रहियो आहे।

आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन कमीशन चूंड शेड्यूल तब्दील करे छो। मीरपुर डिवीजन में आम चूंडू 27 जुलाई ते ही, मुजफ्फराबाद डिवीजन में चूंडू 2 अगस्त ते थींदियूं। मुल्क में रहंदड़ कश्मीरी मुहाजरनि जी 12 सीटनि ते चूंड 2 अगस्त ते थींदी। बोंच डिवीज़न में चूंड 10 अगस्त ते थींदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल चयो त आज़ाद कश्मीर में चूंड अमल खे मुकमल तौर ते शफ़ाफ़ बणायो वेंदो, परॾेही मुबसर बि चूंड अमल ॾिसी सघंदा।

पंजाब के मुख्तलिफ शहर में बरसात तबाही मचाए छी। गुजरात ए गुजरांवाला जहा रोड रस्ता बुड़ी वाया। मुख्तलिफ वाक में पंज जणा फौत ए सत जणा जख्मी थे तस्दीक।

नओ दंबालो भरसा बुढ़ो कंबराणी शहर में दुकानदार कुहाड़ी हणी बेदर्दी से कतल। जवाबदार गुलाम रसूल कलोई दुकान ते वेठल इफ्तखार आराई के कुहाड़ी हणी कतल कयो। वाके खिलाफ शहरन ए व्यापारन जो कारोबार बंद करे पुलिस पोस्ट आलो धरनो। पुलिस कार्रवाई कंदे इल्जाम हेठ आयल जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो।

0: ਸਾਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਰੀਅਤ ਪੋਟੇ ਕੇ ਬਚਾਈਂਦੇ ਮਿਟਾਉ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਢੀ ਪੋਤ ਕੋਠ ਬਹਾਦਰ ਖੋਸੋ ਵਾਸੀ ਮਾਸੂਮ ਬਾੜੋ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਰੀ ਪਿਓ ਪੋਰੀਅਤ ਭੂਰੋ ਕੋਲੀ ਪੋਟੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣ ਬੁਢੀ ਪੋਤ ਥੀ ਵਿਓ ਮਕਾਮੀ ਮਾਣਨ ਨੇ ਪੈਂਜੀ ਮਦਦ ਪਾਣ ਤਹਿਤ ਪੋਰੀਅਤ ਜੋ ਲਾਸ਼ਤ ਕਯੋ
1: कश्मोर ऐं मनहड़ो मां ॿिनि ॼणनि जा लाश हथ कश्मोर जे बी एस फीडर मां आर डी 45 वटां लाश मिलियो। इतला बावजूद पुलिस देर सां पहुचण ते ॻोठाणनि पंहिंजी मदद पाण तहत लाश खे इस्पताल मुंतकिल कयो। मनहड़ो भरिसां रोहड़ी कैनाल में यूसुफ डाहिरी रेगुलेटर वटि हिकु शख़्स जो लाश कढियो वियो। ॿिन्ही जी सुञाणप न थी सघी हुई।
0: मीरपुर माथेरे में औरत जो احتجاج मुड़ुस ते थी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। मुसमात मुमताज़ दाहिंदे चयो त संदसि मुड़ुस शकील सोलंगी पैसा नेवस सदफ जी ज़बरदस्ती शादी कराई आहे। मामले जो नोटिस वठी न्याणी वापसि ॾियारी वञे। ज़ाल जे इल्ज़ामनि खां पोइ शकील सोलंगी पंहिंजी धीउ सदफ खे साण करे थाणे ते पहुची वियो। सदफ बयान रिकॉर्ड कराईंदे चयो त केस कंहिं बि विकिरो नाहे कयो, हुन पीउ ऐं पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि शादी कई आहे। पुलिस मूजिबि नारी खे सुभाणे अदालत में पेश कयो वेंदो।
1: लाड़काणे तालीमी बोर्ड 10 जमात जे सालियाने इम्तिहाननि जा नतीजा पधरा करे छॾिया। साइंस ऐं जनरल ग्रुप जे सालियाने इम्तिहाननि में मजमूई तौरु 58,435 शागिर्दनि हिसो वरितो। 48,993 शागिर्द पास, 9,468 शागिर्द फेल थी विया, 966 कापी केस कया विया, 54 जा नतीजा रोकिया विया आहिनि। कंट्रोलर मूजिबि साइंस ग्रुप में मोहम्मद हारिस शेख पहिरीं, मोहम्मद हुसैन सांगी, नौफल शकील अहमद कटबर गॾियल तौरु ॿीं ऐं अबा वसीम तुनियो टीं पोज़ीशन माणे वरिती। जनरल ग्रुप में नूर मुस्तफ़ा खोखर पहिरीं, उज़ैर महर ॿीं ऐं मोहम्मद यूनस चतोई टीं पोज़ीशन माणी आहे।
0: केटीएन न्यूज़ ऐं काविश पारां हिकु वण सिंध अमर जे नाव जे उनवान सां भरपूर मुहिम शुरू करण जो ऐलान। 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण वारी मुहिम भरपूर नमूने सां हलाई वेंदी। मुहिम दौरान पंहिंजे घर, घिटी, पाड़े, शहर, पार्कनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पंहिंजे हिसे जो बूटो पोखी सिंध अमर खे तोहफ़ो ॾेई सघिजे थो। इन बूटे जी सार संभाल जो वचन बि कयो वेंदो। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमनि, शागिर्दनि, पोरियतनि, उस्तादनि समेत समूरन माहौल दोस्त दूरियन के वण पोखण वारी सदका जारिया में भरपूर शिरकत की दावत।
2: Died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Everything that they sacrificed will be for nothing if we do not stand Dictus. Do not my words.
1: मारोल एंटरटेनमेंट जी नई फिल्म अवेंजर्स डोम्स डे जो पहिरियों ट्रेलर जारी। ट्रेलर जारी थींदे ई किरोड़े माण्हुनि ॾिसी वरितो। फिल्म 18 डिसंबर ते समूरी दुनिया में रिलीज़ कई वेंदी।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अमरीकी अमलन जे जवाब में ईरानी फौज कुवैत बहरैन उर्दन में अमरीकी फौज अड्डन से हमला अमरीकी रेडार दिफाई निज़ाम एफ 15 जहा तबाह करण की दावा पासर इनकलाब उर्दन में अमरीकी फौज के कॉम्प्लेक्स से हमले में केतरा ही अमरीकी फौजी मार बहरैन में अमरीकी कंपनी एमेजोन जो डेटा सेंटर भी तबाह किया वो है खत्े में अमरीका लाए का भी जगह ना है अमरीकी फौज वधिक नुकसान का बचण चाहे थी तो खत्े मां निकरी वने
1: ईरान वाली जंग से गड मुआशी जंग भी बढ़ी रो है गाल में ईरान जो कामयाबी ऐसी अमरीका माहिदो टोड़ो मामलन के संभालींदो ॾिसी ट्रंप जंग शुरू कई ईरानी सदर मसूद पशक्यान चयो आहे त सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ताईं रसाई वधी आहे सुप्रीम लीडर खानगी गॾिजाणियुनि में अमन ते ज़ोर भरियो आहे
0: भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइश का बहरा एहतजाज कदड़ कांग्रेस के अगवाण ने कारकुन से पुलिस कड़की पई अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और असेंबली मेंबर प्रियंका गांधी समेत केतर ही अगवाण गिरफ्तार कांग्रेस पारा शागिर्द मथा तशद्द खिलाफ एहतजाज किया हो राहुल गांधी काक्रोच जनता पार्टी के हथे खाली कारकुन और शागिर्द मथा तशद्द की मजम्मत कदे है हिंदू इंतहा पसंद जमात आरएसएस भारत के तालीमी निज़ाम से कब्जो कर रखियो आहे।

0: जलालपुर कैनाल ते असांजा एतराज़ बरकरार आहिनि। गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल में बि वियल आहियूं। सिंध खे सदाई हिसे खां घटि पाणी मिलियो आहे। टेलीमेट्री सिस्टम ऐं इरसा जे तरीक़े ते केतिरा ई भेरा एतराज़ वारिया आहिनि। कराची में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त पाणी बाबति टास्क फोर्स आबी मुआदनि जो जाइज़ो वठी हिकमतमली जोड़ींदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जे भाउ सैयद आबाद बि आमन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त प्रिया समेत गुम थियल ॿारनि वारे मामले खे घरु वज़ीर पाण ॾिसी रहियो आहे।
1: पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ी आज़ाद कश्मीर में चूंड जलसे दौरान वफ़ाक में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे मरियम नवाज़ चयो त कुझु माण्हू हिते अची नून लीग ते इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहिनि। इल्ज़ाम लॻाईंदड़ ॿुधाइनि त हिते कंहिंजी हुकूमत आहे, जिन जे पंहिंजे सूबे जा रस्ता टुटल आहिनि उहे आज़ाद कश्मीर जा रस्ता कीअं ठाहींदा, जिन जे सूबनि जा वसीला करप्शन जी वर चढ़ियल आहिनि उहे आज़ाद कश्मीर खे वसीला कीअं फराहम कंदा।
0: अवाम 47 वारी जमात अॼु कश्मीर में सियासी हमदर्दियूं हासिल करण लाइ निकिती आहे। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदनि खे अॻु बि रद्द करे चुको आहे ऐं आईंदा बि रद्द कंदो। जाली मैंडेट जे सहारे इक़्तदार ते क़ाबिज़ जमात कश्मीरियुनि जे हक़नि जे अलमबरदार बणजण जी कोशिश करे रही आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जे बयान ते रदअमल। हुन चयो त फॉर्म 47 वारी जमात जे सियासी तारीख़ अवामी मैंडेट जी तोहीन सां भरी पई आहे। गिलगित बल्तिस्तान जीअं कश्मीरी बि फॉर्म 47 जी जमात खे रद्द करे छॾींदा। न विसारियो त अॼु बि पंजाब जा लखे शहरी बहितर इलाज लाइ सिंध ईंदा आहिनि।
1: नवाज़ शरीफ आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म थियण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर करे छॾी। आज़ाद कश्मीर खे पंजाब तरफ़ां 10 ग्रीन बस ऐं क्लिनिक ऑन व्हील्स जूं 15 गाॾियूं ॾियण जो ऐलान। मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब करे नवाज़ शरीफ चयो त जेकॾहिं अवां नून लीग खे वोट ॾींदा त मां पाण हर महीने आज़ाद कश्मीर ईंदुसि ऐं मसला हल कंदुसि। असांजी हुकूमत चई त आज़ाद कश्मीर जा सभु मसला हल कंदासीं। मूंखे आज़ाद कश्मीर बि पंजाब जेतिरो अज़ीज़ आहे।